जे आवे आस कर जाए इंद्रा से कित फल पिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिठत नीव नानका गुण चंगियाईया तत सबको निवे।

0: कहते जब माली ताल मलेशा खाई अंतर पूजा अपने कते बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जय त्रंदा महला पहला
1: मांस खाने करे निवास श्री बगैन तीन गल ताक तीन कर ब्रह्मन पूरे नाल ना पिया ईसा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़े आ भरपूर मथे टिक्का तेर धोती कखाई अछरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश धान ले पूजे प्राण पाक्या।
2: हुण तुसीं सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण। मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6 बज रहे ने, लै चलदे हां अपने दिल्ली केंद्र जिथों हिंदी च समाचार सुनोगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक

0: आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: रुलिया राम जी जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी बच्चालो की हाल चाल है तेरा?
0: हाले चले वाह वाह पली है ना। गल ये आ भी जे आप अपना सुख संद दस देना किसी नू, ते मैं कदे कदे सोचदा हुंदा भी रुलिया राम जी तुहाडा भी की हाल है।
1: हाँ देखो, हाल चाल पुछना, राजी बाजी पुछना या किसी दे बाबत फिक्र करनी, संसा करना, यही समाज है साडा।
0: बिल्कुल जी, इंसानियत
1: करना भी चाहिए है। हुण तां समां ऐसा आ गया रंगा सिंह जी कि हर बंदे नूं आपो धाप पई हुई है। पहले लोकीं दे विच जिहड़ा इक सुरता इक जुटता बहुत ज़्यादा सी। खेतीबाड़ी दे विच वी इक दूजे दे कम्मां दी फिक्र हुंदी सी, भाई तूं नबेड़ लिया कम्म जाइए नाल लगीए। सो इस करके हुण क्योंकि मशीनीकरण दा युग है, बंदिया की जगह मशीन ने ले ली है।
0: सही गल।
1: अगला कहना मैं किसी तो कहना उत्थे है जी, वो अपने अपने तक सीमित हो गया बंदा।
0: बिल्कुल।
1: पर रंगा सिंह जी जिथे बंदा खड़ता उत्थे बंदा ही खड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जिन्ना मर्जी मशीनीकरण हो जाए। देखो आ समा जिहड़ा है फसलों के जो आप गल करते हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण समा है, क्योंकि फेर बदल रुत का जो फेर बदल हुंदा है तो फसलों का फेर बदल हुंदा है। सियाल दियां जिहड़ियां फसलां अलग ने, गर्मियां दियां फसलां अलग ने
0: जी।
1: तो एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल साडी टमाटरां दी फसल ऐसी है जिहड़ी गर्मी सर्दी हर टाइम।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सब्जी जी टमाटर पैणा ही
0: पैणा ही पैणा,
1: दाल भाजी दे विच बणदे नहीं टमाटर बिना।
0: आ
1: कई लोग तो सलाद दे विच भी बड़ा ध्यान नाल खांदे।
0: मैं कहना जी कई बारी इहदा की करदे आ, जूस कढ के ना ते काली मिर्च पा के पींदे आ,
1: सूप बणाउंदे आ, बड़ा कुछ बणदा जी टमाटरां दा। तां क्योंकि है तां गर्म रुत दी फसल रंगा सिंह जी
0: जी,
1: पर जिद्दां आपां कहिंदे आ वी लोड़ सारा साल है, ते सर्दियां च वी पैदा करनी पैंदी है।
0: बिल्कुल,
1: ते सर्दियां दे विच थोड़ा जिहा इह है कि इहनूं पैदा करना औखा है, क्योंकि कोहरा इस फसल का बहुत ज्यादा नुकसान करता है।
0: ओहो,
1: सो इस करके सर्दी की फसल लैण लई सानू बड़ा ही चुकन्ने, बहुत ही ध्यान दे नाल इहदी काश्तकारी जिहड़े ढंग है उन्होंने अपनाउणा चाहीदा है
0: जी।
1: जिथों तक रंगा सिंह जी किस्मां की गल है ना, अपने कोल जी हाईब्रिड दे विच गल करिए, TH एक किस्म है, तो इस तरह अपने कोल पंजाब स्वर्णा है किस्म, पंजाब सोना चैरी है किस्म, पंजाब केसर चैरी है, पंजाब बरखा बहार है अपने कोल।

0: पंजाब गौरव है, पंजाब सरताज है, पंजाब रेड चेरी है, पंजाब वर्खा बहार है, पंजाब वर्खा बहार नंबर दो है, पंजाब रत्ता है, पंजाब उपमा है, है जी, पंजाब एनआर सात दे पंजाब छुआरा।
1: वाह जी वाह, बढ़िया किस्मां ने।
0: ते तो हिसाब ला लो भी, मैनू लगता भी अद्धी दर्जन तो भी कितने ज्यादा
1: ही कितने ज्यादा ही आ।
0: सो इस करके किस्मां तो साढ़े को भरपूर है, हाइब्रिड किस्म की है। चोण आप देखो रंगा सिंह जी अपने लिहाज न करनी है।
1: बिल्कुल,
0: कई लोग हाइब्रिड न तरजीह देंदे है, कई जो अपने प्रचलित किस्म है उन्होंने तरजीह देंदे है। यह तो है किसान की अपनी मर्जी। बाकी रंगा सिंह जी काश्तकारी ढंगा दे विच जिदा आप पहलों जिक्र किया है कि थोड़ा ध्यान रखने की लोड़ है, क्योंकि सर्दियों की रुतली टमाटर की पनीरी जीड़ी है आप अक्तूबर नवंबर के बीज के नवंबर दसंबर के बीच बूटे आप खेत लाने।
1: ठीक,
0: तो कोरे तो बचाने लई जिहड़ा है सरकंडे या फिर पॉलीथीन की शीट इहदा छौरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
1: अच्छा जी,
0: रंगा सिंह जी दसंबर तो बाद पछेती बिजाई लई ना पंजाब छुहारा टी एच एक पंजाब उपमा ते पंजाब रत्ता
1: जी
0: ये किस्म छौरे हेठ पूरी कामयाबी नाल उगाइया जा सकती हैं।
1: अच्छा जी,
0: हाँ ये मतलब ज़्यादा जड़ियाँ है साढ़े लिए किस्म जड़ियाँ तरजीही ने। रंगा सिंह जी बूटियां ना ढकन पॉलीथीन दिया थैलियां की वरतों भी आप कर सकते जिड़ियाँ कोई 35 सेंटीमीटर लंबी 25 सेंटीमीटर चौड़िया 100 गेज दिया मोटिया ते बाकी जितों तक पनीरी जिहड़ी है वह फरवरी के पुट के खेच ला सकते हैं। तो इसलिए नवंबर च पनीरी बीजो तो सर्दियों कोहरे तो बचा लिए पॉलीथीन की शीट या सरकंडे छौरा करो।
1: समझ गया।
0: तो फरवरी च लाई फसल नवंबर वाली फसल तो झाड़ घट दें, पहले मैं तुम्हें दसिया है क्योंकि पाला जिहड़ा है ये फसल औखा करता है।
1: करता जी करता।
0: तो रंगा सिंह जी देखो गल है भी पनीरी तैयार करने लिए ना कोई 1.5 मीटर चौड़िया तो 20 सेंटीमीटर उच्चिया क्यारियां आपां ने बनाउणियां
1: जी।
0: क्यारियां बनाउण तो पहला 10 क्विंटल गली सड़ी रूड़ी इस जमीन च आपां मिलाउणी है, पर ध्यान ही रखना है कि रूड़ी गली सड़ी होनी चाहिए है।
1: बिल्कुल जी,
0: ये ना हो विच आपां कोई ऐसी चीज़ सड़ दिए तो वह साड़ी फसल का नुकसान तो साडा नुकसान हो जाए। तो क्यारियां च बिजाई तो घट्टो घट 10 दिन पहला पानी देना है
1: जी।
0: एक आप काम होर कर लिया कि क्यारियां च ना कोई 1.5 तो लैके 2% फार्मलीन का घोल, ये 4 तो 5 लीटर घोल फी वर्ग मीटर ना गुलच करना है। तो क्यारियों को प्लास्टिक की चादर 48 तो 72 घंटे तक ढकना है। बाद च कि दिन एक बार 4 तो 5 दिन तक क्यारियों की मिट्टी पलटाउनी है ताकि फार्मलीन का असर खत्म करना है
1: जी महाराज।
0: तो बीज की सोध लिए 3 ग्राम कैप्टान फी किलो बीज यह बरतना है
1: जी।
0: बीज जो 1 तो 2 सेंटीमीटर डूंघाई तो कतारा 5 सेंटीमीटर की बिथ से बीजना है।
1: ठीक।
0: पनीरी दे पुंगरों तो 5 तो 7 दिन बाद कैप्टान कहने का भाव 4 ग्राम फी लीटर पानी के घोल नाल गुड़ करो तो 7 तो लैके 10 दिन के बाद फिर आप दोहराओ करना है।
1: अच्छा जी।
0: सो ये फसल जी लैन का इन्हों दिनों ध्यान आप रखना है। एक रंगा सिंह जी इतना खादा की गल करते हैं, 10 टन गली सड़ी रूड़ी 25 किलो नाइट्रोजन 25 किलो फॉसफोरस 25 किलो पोटाश
1: जी।
0: ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
1: ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ
0: ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਹ ਆਹ,
0: ਤੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ
1: ਜੀ।
0: ਸੋ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ
1: ਪਵੇ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਂਪ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
1: ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜੀ,
0: ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਬਦਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
1: ਸਹੀ ਗੱਲ,
0: ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲਾਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ।
1: ਸਹੀ ਗੱਲ।
0: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ

याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्रीराम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आई। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: धनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 90,000 कोटि रूप्यतोप्यधिका राशि आवंटिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य पञ्चवर्षपर्यन्तं राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,000,453,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमन्त्री सामाजिक सहायता योजना इति कृतमस्ति। श्रीवैष्णवः दिव्यांग पेंशन योजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रिय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषि क्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंग वर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां चतुर्थायां 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 24 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही लद्दाख विच करीब 3,350 करोड़ रुपये दे 5 वड्डे विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली विच एशियन खेडां 2026 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय खिडारियां दे नाल भी मुलाकात करनगे। सरकार वल्लों रेलवे मुलाजमां नूं 78 दिनां दे उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी। 5 सालां दी मियाद दी राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम नूं जारी रखण नूं भी प्रवानगी। मानसा विच नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटे दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिता है कि इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शिया नहीं जाएगा। बीएसएफ ने तरन तारण की ड्रोन विरोधी टीम दे विच तैनात पंजाब पुलिस दे कांस्टेबल तो 15 किलोग्राम तो वध हेरोइन जब्त की। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 154 नवे आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किए। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की उपजीविका में सुधार करके एक आलमी भोजन भंडार बनने वाल वध रहा है। सरकार वालों गन्ना किसानों को दरपेश मुद्दों की जांच लई एक कमेटी का गठन। पंजाब कर विभाग के वलों 429 करोड़ रुपये के GST धोखाधड़ी नैटवर्क के पर्दाफाश। लुधियाणा दे विच एक ट्रांसपोर्टर ते 2 साथियों खिलाफ मामला दर्ज। अते भारत ने आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेडा विखे मर्दा की 1,000 मीटर स्प्रिंग श्रेणी विच चांदी का तगमा जितया। सो ये सन न्यूज हेडलाइंस। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जानकारी ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: लो जी, गाने तो बाद मैं फिर आ चुकी हां सोनी स्वर प्रोग्राम दे विच शीतल तुहाडे नाल गल्लां करन दे लई। पिछले गीत तो पहला मैं तुहाडे नाल गल कीती सी कि जापान दी रवायत है कि गुड्डी सुट के उहदी वापस शेप आउंदी है ते उह मन्नदे ने कि जिंदगी दे विच कुछ भी तुहाडे नाल हो जावे तुसीं दुबारा खड़े हो सकदे हो। ते इह जापान दी रवायत हर थां दे उत्ते लागू हुंदी है। गल करदे हां असीं अपने भारत देश दी, गल करदे हां अपने जलंधर शहर दी। जलंधर शहर दे विच वी इक इहो जिही ही एग्जाम्पल सामने आई है। जिस उम्र दे विच जिंदगी रफ्तार वल वधदी है उस उम्र दे विच युवराज अरोड़ा नाम दे एक बच्चे दा अचानक एक्सीडेंट हो जांदा है। 2024 दे विच उसका एक्सीडेंट हुंदा है। सड़क हादसे दे विच उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ऑपरेशन तो बाद लत दे विच इन्फेक्शन इन्नी ज्यादा वध गई कि डॉक्टरां नूं उहदी लत भी कटनी पै गई। 6 महीने तक बिस्तर दे उत्ते रहण तो बाद युवराज ने व्हीलचेयर संभाली, जिम पहुंचना शुरू किया ते हुण अज ओही युवराज 19 साल दी उम्र दे विच नैशनल चैंपियन है। 22 सितंबर नूं होई दिल्ली दे विच WPC नैशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप दे विच 56 किलो भारत वर्ग दी नॉर्मल कैटागरी दे विच 95 किलो बेंच प्रेस लगा के युवराज ने पहला नैशनल गोल्ड जितया है। जापान दी रवायत नूं सच करके दिखाया 19 साला इस युवराज ने। गल करदे हां इस बुलंद हौसले वाले नौजवान दे नाल। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। ए दसो कि जदों हादसा वापरिया उदों की हालत सी ते किवें इक लत दे नाल तुसी इस चैंपियनशिप तक पहुंचे?
1: मेरी हालत बहुत खराब सीगी क्योंकि मेरी जिहड़ी पूरी लत सीगी, मेरा गोडा ते मेरी थाइस पूरी घूम गई सीगी, मतलब पिछे साइड चली गई सीगी। ऑपरेशन तो बाद मेरी लत सीधी तो हो गई सी, पर ऑपरेशन खराब करता सी डॉक्टर ने, उस करके इनफेक्शन हो गई सी। ता फिर चंडीगढ़ शिफ्ट कराना गया सी, उदो तक तो इनफेक्शन ज्यादा हो गई सी, फिर वो कहंदे कि कटनी पैनी इदां दा, ते बस ओही सीन सी
0: जी। ते फिर किस तरह मन कीता इक लत तो दे नाल वी कि मैं जिम जावां ते मैं कुछ करना है?
1: एक्चुअली बंदा ना एक रूम च नहीं ज्यादा देर बैठ सकता, कोई भी 1-2 महीने बह जाएगा, ज्यादा तो ज्यादा 3 महीने डिप्रेशन से जाएगा ही जाएगा। तो बंदे नूं हुंदा कि थोड़ा बाहर निकले या कुछ करिए, जेड़ी चीज तुहानूं पसंद है वो करिए। ते फिर मैं सोचिया कि मैं व्हीलचेयर ते ही जिम जाना वगैरह शुरू करा, ते ओही फिर मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया, ते बाकी फिर लग गया, मन लग गया, फिर मैं छुट्टी नहीं कीती, गई जाएगा जाएगा
0: जी। कोई ट्रेनिंग भी ली है तुसी उस तो बाद?
1: जी मैं आप ही कीता, एदा मैं कोई पर्सनल कोच वगैरह नहीं रखा, मैं आप ही सीखा ते आप ही कीता। बाकी मेरे पापा ने काफी हेल्प कीती सी मेरी जी। पापा ने, मम्मी दोनों ने।
0: युवराज जदों पता लग गया कि एक लत जा चुकी है ते एक बार तो लगा होएगा कि जिंदगी हुण खत्म ही है, कि एक लत दे नाल की कीता जा सकदा है, पर ए राह किद्दां लभिया, ए किसने रोशनी पाई कि नहीं हजे भी बहुत कुछ कीता जा सकदा है?
1: मैं जदों मेरा ऑपरेशन होया सी चंडीगढ़ च, मिडनाइट होया सी, एमरजेंसी, ते उदों ही मैनूं मतलब पता

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਠੀਕ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ 8:30 ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए

0: टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
0: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन,
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मेरे www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो

0: रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से

0: शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
2: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद की किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
6: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Atletico Stumps United, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today. Union Cabinet approves productivity-linked bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: નમસ્કાર, એ આકાશવાણીએ ખબરાં દે નાલ મેં સરબજીત કૌર. પહેલા ઇસ બુલેટિન દીયાં ખાસ ખબરાં. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज लद्दाख विच करीब 3,350 करोड़ रुपए दे 5 वड्डे विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख तो वध रेलवे मुलाजमां लई 78 दिनां दी तनखाह दे बराबर उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी दित्ती. खेतीबाड़ी विच औरतां दे योगदान दा सन्मान करन लई अज राष्ट्रीय पद्धर ते महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है. नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 94 व्यक्ति तो व्यापारी UPI लेन देन ते व्यापारी छूट दर MDR लागू करन नु मुलतवी कर दिता है. ते मौसम विभाग वल्लों आज पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी तो बेहद भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी. हुण खबरां विस्तार नाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही लद्दाख विच करीब 3,350 करोड़ रुपए दे 5 वड्डे विकास प्रोजेक्टा दा उद्घाटन करनगे अते समर्पित करनगे. इन्हां प्रोजेक्टा दा उद्देश संपर्क नूं मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे नूं बेहतर बनाउणा, सभ्याचारक विरसे नूं सुरक्षित रखना अते खेतर विच पाणी सुरक्षा नूं वधाउणा है. ओह इस मौके ते इकट्ठ नूं संबोधित वी करनगे. प्रधानमंत्री लेह दे कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे ते नवी मुसाफिर टर्मिनल इमारत दा उद्घाटन करनगे जो कि 640 करोड़ रुपए दी लागत नाल बनी है. ए हर साल 35 लाख मुसाफरां नूं संभालण लई तैयार कीती गई है. प्रधानमंत्री सरहदी सड़क संस्था BRO वल्लों बनाई गई 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पादुम दरशा सड़क नूं समर्पित करनगे. लेह दे निम्मू नूं दूर दुराडे दी जांसकर वादी राही हिमाचल प्रदेश दे दारचा नाल जुड़न वाली ए सड़क लद्दाख लई एक विकल्पक संपर्क लांघा प्रदान करदी है जिस नाल श्रीनगर लेह ते मनाली लेह रूटां ते सफर होर भी आसान हो जांदा है. श्री मोदी लेह दे सिंधु घाट विच भारत दे पहले पेट्रोग्लिफ कंजरवेशन पार्क अते हिम सरोवर प्रोजेक्ट तहत 40 पिंडां विच विकसित कीते गए 40 जल स्रोतां दा भी उद्घाटन करनगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम नवी दिल्ली विच एशियाई खेडां 2026 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गल्लबात करनगे. प्रधानमंत्री इस मौके संबोधन भी करनगे. भारत जापान दे आईची नागोआ विच होईयां एशियाई खेडां विच 21 सोने दे 27 चांदी दे अते 37 कांसी दे तमगयां नाल तमगा सूची विच चौथे स्थान ते रहा. ए एशियाई खेडां विच चोटी दे 5 देशां विच भारत दा लगातार दूजा स्थान है जो कि वख वख खेड विषयां विच देश दी वधदी मुकाबलेबाजी नूं दर्शाउंदा है. भारत ने खेडां विच कई महत्वपूर्ण प्राप्तियां भी दर्ज कीतियां जिन्हां विच रिकर्व तीरअंदाजी विच इतिहासक कारगुजारी, उसे एडिशन विच मर्दां ते औरतां दी हॉकी टीमां दोवां लई सोने दे तमगे अते सॉफ्ट टेनिस अते मिक्स मार्शल आर्ट्स विच पहले तमगे शामिल ने. होर महत्वपूर्ण प्राप्तियां विच औरतां दे ट्रैप मुकाबले विच भारत दा पहला सोने दा तमगा, 28 सालां दे वक्फे तो बाद एशियाई खेडां विच वेट लिफ्टिंग विच चांदी दा तमगा ते ग्रीको रोमन कुश्ती विच चांदी दा तमगा शामिल सी जिस नाल इस खेड विच किसे भारतीय फाइनलिस्ट दी 64 सालां दी उडीक खत्म होई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रधानगी हेठ होई मीटिंग विच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 तो वध रेलवे मुलाजमां लई 78 दिनां दी तनखाह दे बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB नूं मंजूरी दे दित्ती है. सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल दी मीटिंग तो बाद मीडिया नूं दस्या कि सरकार ने इस उद्देश लई 2000

0: 9 करोड़ रुपए तो वध का बजट अलॉट किया है। योग मुलाजमान नू 78 दिन लई वध तो वध 17,951 रुपए का बोनस मिलेगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इस बीच रेलवे लाइन रखरखाव स्टाफ, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंटमैन ते मंत्रालय दे मुलाजमा समेत ग्रुप सी दे मुलाजम शामिल ने। मंत्रिमंडल ने 53,428 करोड़ रुपए दे कुल बजट नाल 2026-27 तो 2030-31 तक 5 साल लई राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम NSAP नु जारी रखण नु भी मंजूरी दे दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट विखे राष्ट्रीय सरस उपजीविका मेला 2026 का उद्घाटन करेंगे। पहली बार राष्ट्रीय पद्धर का मेला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेतर तो बाहर कराया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 देश भर के स्वय सहायता समूह दिया देहाती औरतों अपने उत्पादों का विखाला करन, व्यापक बाजारा तक पहुंचन, अपनी उपजीविका मजबूत करने एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय देहाती विकास मंत्रालय वालों आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग नाल कराया जा रहा यह मेला करीब 1,500 औरत उद्यमियों और कारीगरों को एक थान लाएगा। राष्ट्रीय सरस मेला लखपति दीदी पहलकदमी नू उजागर करता है, जिसका उद्देश्य देहाती औरतों नू निरंतर रहने योग आमदन और माली स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना है। खेतीबाड़ी विच औरतों के योगदान का सम्मान करने लिए अज नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय पद्धर से महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्रालय मुताबिक औरतां बिजाई, काश्त, वाढ़ी, पशु पालन और बीज संभाल वर्गे वख-वख कम्मां विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदियां ने। मंत्रालय ने कहा है कि औरत किसानों का योगदान देश की खेतीबाड़ी नू मजबूत कर रहा है और इस नू आत्मनिर्भर बना रहा है। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AIRRNews जलंधर। सरकार ने गन्ना किसानों वालों उठाए गए मुद्दों की जांच करन अते उन्हां दीआं चिंतावां नूं दूर करन लई ढुकवें उपावां दी सिफारिश करन वास्ते एक कमेटी दा गठन कीता है। कर्नाटका अते महाराष्ट्र दे गन्ना किसानों दे प्रतिनिधियों दी केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री अते केंद्रीय खपतकार मामले, खुराक ते जनतक वंड मंत्री नाल होई मीटिंग विच लए गए फैसलों तों बाद ही कमेटी बनाई गई है। खपतकार मामले, खुराक ते जनतक वंड मंत्रालय ने कहा है कि कमेटी गन्ना किसानों नूं खेती लागतां अते होर संबंधित कारकां नूं ध्यान विच रखते हुए मेहनताना वापसी विच वाधे दी मांग दी जांच करेगी। एह खंड उत्पादन लागतां, बाजार कीमतां अते खंड मिलां दी माली विहारकता दे संदर्भ विच खंड दी मिल प्रक्रिया तों बाद दी घट्टो घट विक्री कीमत MSP विच सोध दी मांग दी भी जांच करेगी। कमेटी किसानां नूं भुगतान योग गन्ने दी कीमत ते मौजूदा ढंग तरीकियां ते माली प्रभाव दा उलंघण करेगी अते लोड़ मुताबिक होर संबंधित मामलां ते भी विचार कर सकदी है। सरकार ने खंड डीलरां लई भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन कर दित्ती है ते भंडार सीमा 1,000 क्विंटल तय कीती है, जो अज तों लागू होएगी। इस साल नवंबर तक लागू रहेगी। खपतकार मामलों बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने त्योहारां दे सीजन दौरान जमाखोरी नूं रोकण अते खपतकारां नूं सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई खंड भंडार रखण दे नियमां नूं सोधिया है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 94 व्यक्ति तो व्यापारी UPI लैण देण ते व्यापारी छोट दर MDR लागू करन नूं मुलतवी कर दिता है। इस तों पहला NPCI ने ऐलान कीता सी कि दर अज तों लागू होएगी। इह लागू करन हुण दिवाली तों बाद होएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि UPI अते सेवावां स्टेयरिंग कमेटी ने फैसला कीता है कि त्योहारां दे सीजन नूं ध्यान विच रखदे होए 94 व्यक्ति तों व्यापारी UPI लैण देण ते MDR दिवाली तों तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसने कहा है कि तरीक नूं वखरे तौर ते नोटिफाई किया जाएगा। रियाद विच भारतीय दूतघर ने साउदी अरब विच रहिंदे सारे भारतीय नागरिकां नूं स्थानक अधिकारियां दीआं हदायतां दी पालना जारी रखण दी अपील कीती है। दूतघर ने लोकां नूं हवाई हमले दी स्थिति विच घर दे अंदर रहण अते मौजूदा घटनाक्रम नाल संबंधित वीडियो जां खबरां प्रसारित ना करन दी अपील कीती है। आपणी नवीं सलाह विच दूतघर ने कहा कि 10 अक्तूबर नूं रियाद हवाई अड्डे ते होए हमले विच जख्मी 2 भारतीय नागरिक ICU विच ने, 1 भारतीय नागरिक नूं ICU तों हाई डिपेंडेंसी यूनिट विच तब्दील कर दिता गया है।

0: भारतीय नागरिक जनरल वार्ड विच इलाज करवा रहे थे। भारतीय मौसम विभाग एमडी ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच भारी तो बेहद भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग मुताबिक पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश विच अज गड़ेमारी दे नाल हनेरी झक्खड़ आ सकदा है। खेडां विच क्रिकेट विच बीती रात हैदराबाद विखे खेडे गए चौथे 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विच वेस्ट इंडीज ने भारत नूं 24 तोड़ां नाल हराया है। पांच मैचां दी लड़ी हुण 2-2 नाल बराबर है। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज लद्दाख विच करीब 3,350 करोड़ रुपए दे पांच वड्डे विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख तो वध रेलवे मुलाजमां लई 78 दिनां दी तनखाह दे बराबर उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी दित्ती। खेतीबाड़ी विच औरतां दे योगदान दा सम्मान करन लई अज राष्ट्रीय पद्धर ते महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। ते मौसम विभाग वल्लों अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी तो बेहद भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम महक पंजाब दी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी तुहाडा सारिआं दा तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम महक पंजाब दी दे विच ते मैं हाँ तुहाडे नाल तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट नीतू लैके हाजिर हाँ जी इस प्रोग्राम नूं। सो अज दे इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इस गीत दे नाल।

जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: ते लो जी, ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा सब दा स्वागत करदे आं। ते अज असी गलबात कर रहे हां तुहाडे अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम दे विच गाता रहे मेरा दिल दे विच फिल्मी गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के मैंने हर प्यार दा तुहाडे दा अंत खुशी नाल नहीं। कई बार रिश्ते अधूरे रह जांदे ने ते कई बार दुनिया बच जांदी है ते कई बार दिल दे कांटे दे विच रह जांदी है। अमिताभ भट्टाचार्य दे गीतां दे विच वी इन्हां भावनावां नूं बहुत ही खूबसूरत थां दित्ती गई है। उन्होंने उदास भावों के गीत सुनने वाले यादों

0: इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: 10 बजे ने पेश ने न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज लद्दाख विच करीब 3,350 करोड़ रुपए दे 5 वड्डे विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम नवी दिल्ली विच एशियाई खेडां 2026 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय दल दे नाल गल्लबात करनगे। केंद्रीय मंत्री मंडल ने 11 लाख तों वध रेलवे मुलाजमां लई 78 दिनां दी तनखाह दे बराबर उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी दित्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज विजयवाड़ा दे पुनवी घाट विखे राष्ट्रीय सर्व उपजीविका मेला 2026 दा उद्घाटन करनगे। खेतीबाड़ी विच औरतां दे योगदान दा सम्मान करन लई अज राष्ट्रीय पद्धर ते महिला किसान दिवस मनाया जा रहा। सरकार ने गन्ना किसानां वल्लों उठाए गए मुद्दियां दी जांच करन अते उहनां दियां चिंतावां नूं दूर करन लई ढुकवें उपावां दी सिफारिश करन वास्ते इक कमेटी दा गठन कीता। सरकार ने खंड लीडरां अते भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन कर दित्ती है अते भंडार सीमा 1,000 क्विंटल तय कीती है जो अज तों लागू होवेगी। मानसा विच नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शिया नहीं जाएगा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 154 नवे आम आदमी क्लीनिका नूं लोकां नूं समर्पित कीता। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानां दी उपजीविका विच सुधार करके एक आलमी भोजन भंडार बनने वल वध रहा। गैंगस्टर दे वार मुहिम तहत हुण तक कुल गिरफ्तारियां दी गिनती 78,413 हो गई है। नैशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने 94 व्यक्ति तो व्यापारी UPI लैण देण ते व्यापारी छूट दर लागू करन नूं मुलतवी कर दिता है। ते मौसम विभाग दे वल्लों अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी तो बेहद भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी कीता गया। सो ए सन न्यूज हैडलाइनस। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, पेश करन जा रहे हैं तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका तुसी करदे हो बड़ी बेसब्री दे नाल इंतजार, जिसका नाम है जी हैलो फरमाइश। सो इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे हैं, तुसी भी इंजॉय करो जी इस गीत नूं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडारण सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडारण मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडारण सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पर अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। श्री स्वरूप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायुक्त के विस्तृत बयानों का उल्लेख किया। इन बयानों में सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में हुई हत्याओं की तत्काल गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप बहुपक्षीय संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। अबूधाबी में आयोजित रायसीना संवाद के मध्य पूर्व संस्करण में उन्होंने कहा कि देशों के छोटे समूहों के बीच मजबूत सहयोग यानी लघु पक्षवाद इस प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उत्तरी रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली विशेष रेलगाड़ी नई दिल्ली से आज और शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और ये अगले दिन सुबह 3 बजे श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। कटरा से ये रेलगाड़ी कल और 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दूसरी रेलगाड़ी 18 और 20 अक्टूबर को दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और अगले दिन तड़के 3 बजे कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन 19 और 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से प्रस्थान कर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली श्रीमाता वैष्णो देवी विशेष रेलगाड़ी के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम शांति और सद्भाव लेकर आए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियावेव 343

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो और सब तो पहले सुनेहा किदा पहुंचया भी सारे हो गए बेकरार क्योंकि अपना नाम सुनने लिए सारे ही उड़ीकां कर रहे होंगे ने पर पहला किदा नाम आ गया उन्नू जानन लई तुसी सारे बैठ गए होवोगे लो फिर अज बाजी मार ली मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर रजिंदर कौर इंजीनियर अमनदीप सिंह सिमरजीत कौर हठूर इन्हां लई ताड़ियां लो जी बड़ी खुशी हुई होगी इन्हां नूं मैं महसूस कर पा रही हाँ बई मैनूं लगदा नचदे भी होणगे एदां भी हो सकदा अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया है इन्हों का नाम है जी हितिंदर दास और स्टेट असाम इन्होंने असाम तो सानू सुनेहा भेजा है और वेले नाल पहुंच गए ने जी शुक्रिया जी आर पॉल सारा ही पॉल परिवार सराभा नगर जलंधर तो और सुखवीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो इन्होंने सुनेहा भेजा है जिला फाजिलका पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह बलदेव सिंह पंचरावाला वड़िंगखेड़ा तो भोला सिंह और सारा इन्हां दे परिवार दे साथी मैंबर साढ़े कोल वेले नाल पहुंच गए ने जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा पिंड अलूना म्याना तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतबीर सिंह रायपुर शुक्रिया बहुत बहुत और अगला सुनेहा पंचकूला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि शुभम ते लवली पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुलजोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर हरप्रीत कौर गगनदीप सिंह पिंड ते डाकखाना लोगर ठाकरांवाला जिला फिरोजपुर तो सुनेहा भेजा है स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह डॉक्टर राम कुमार नारंग बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखिया तो रम्मी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना पंजाब तो और अगले सुनेहे दे नाल श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ हतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर और जगदीश मठाड़ू वीरपाल गुरबख्श मठाड़ू मोगा तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजिया जी प्यार भरे सुनेहे तुसी सानू भेज देंदे हो और समा भी चेते रखते हो 10 बजे तो लैके 10:30 बजे दे विच विच तुसी साढ़े तक अपने सुनेहे भेज सकते हो और याद रहे कि गीत पंजाबी ही होण जिन्हां दी तुसी फरमाइशां भेजो अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचया है गुरप्रताप ज्योति सुमन मनीषा कृष्ण कुमार और इन्होंने भेजिया जी बीपीओ मिड्डू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो गीत आशा भोंसले की आवाज च सुनना चाहते हो इसी गीत दे नाल कुछ होर नाम शामिल कर रही हाँ पंचकूला सैक्टर 9 तो आशुचुग अश्विनीचुग गोविंद टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक टिंगरा ते अतुल शर्मा और दिल तो शुक्रिया जी साढ़े वालों भी दिल तो शुक्रिया पिंड साबुआणा

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय का ध्यान रखना।

का सरपंच साराही ब्राड़ परिवार सुखदेव सिंह चैल बुर्ज हनुमानगढ़ और कुलवंत गिल मलोट तो भी सारे साथी इन्होंने कट्ठे कर ले और सब दे नाम इन्होंने भेज दिते ते किन्ना एका है ना, बड़ा ही मजा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, एके दी विच ही रहो, एके च ही बरकत है ते सानू भी बड़ी खुशी हुंदी है जदों सारे मिल के सानू नाम भेजते हो ते नाम सुन के फिर लुडियां भी पाते हो। अगला सुनेहा प्रोग्राम च साडे तक भेजिया है डायमंड कलोनी बटाला सिटी तो रोहित सुमित मेहता विनोद प्रीति शर्मा साक्षी गुड़िया बेबी अमिका ऑस्ट्रिया तो इन्होंने मैसेज भेजे है और बीड शहर महाराष्ट्र तो नंद किशोर घटे संगीता घटे साक्षी अंजलि करवा बाला साहिब करवा जयश्री महेत्रे राम निवास अग्रवाल धनंजय टबूल पी बी कुलथे और मदन मोहन लहर सरबजीत लहर संजू नीतिका अजय एंजल लाडला पोता अर्नव लहर भेजा कितों इन्होंने सुनेहा है भी सुन लो मनीला फिलिपिन तो गंगसर बाजार करतारपुर वाले और प्रोग्राम च अगला सुनेहा कृष्ण लाल सिमरी देवी मनोज कुमार पुष्पा राणी शैलेंद्र कुमार पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो इन्होंने सुनेहा भेजे जी कुड़ी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी ते बेबी बॉय हिमांश पिंड तमोट जिला लुधियाना तो बूटा बिंदर प्रगट सिंह धालीवाल रवि पारसो और बलिंदरजीत सिंह हेयर ड्रेसर शिंदा मिस्त्री मूर्ति आर्टिस्ट इन्होंने सारिया ने रल के साडे तक सुनेहा भेजे है सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी प्रोग्राम चगला सुनेहा गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियम बेबी भामिका ते वाणी थांदी इन्होंने सारे जिहड़ा डॉक्टर परिवार है ना इन्होंने सानू पिंड ते डाकखाना टोरोवाल तहसील बलाचौर जिला नवांशहर तो सुनेहा भेजिया जी तहे दिल तो शुक्रिया और अगला सुनेहा डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर थोड़े सारे की रली मिली पसंद है जी लता मंगेशकर ते महिंदर कपूर की आवाज तुसी गीत सुनना चाहते हो तो लो फिर सुन लो अपने रेडियो सेट पे।

0: ਭਾਵੇਂ ਛੰਨੇ ਪਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलते वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने यह बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ

0: जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने श्री नाहियान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोत्चोरीशविली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इन द वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूँ, होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते वीडियो।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान सौ गल्ला दी एक गला सही
1: सिर्फ पैसे भेजन ले क्यू आर कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है पैसे मिलन ले नहीं
2: RBI कहंदा है क्यू आर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पाउंदे समय थोड़ा ध्यान नाल
3: शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सबक
4: समझ नाल इन्वेस्टिंग सिंपल समझ नाल इन्वेस्टिंग सिंपल
5: छोटी रकम नाल शुरुआत

0: सिर्फ पैसे भेजन लिए QR कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है, पैसे मिलन लिए नहीं।
1: RBI कहंदा है QR कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
2: ता शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सबक।

0: फुटन तो पहला पूरे दी ठंडी हवा चुल पई। गर्म रात दी बेरामी मगरों सुखदाई पौन दा एक रुमका बाबू लोकनाथ दी नींद नूं संगना हिलोरा दे गया। एक बड़ा मिठा ते रंगीन सुपना बाबू लोकनाथ नूं आया। कॉलेज विच ओ ग्रस्त वृद्ध किन्ना विस्कोलिया करदा सी ते हुण ओदे चारे पासे ग्रस्त ही ग्रस्त लेटिया सी। ओ बड़ा उबासर के आख्या करदा सी,
1: की जिंदगी है, बीए पास करो, क्लर्की करो, शादी करो, दुनिया की आबादी च वाधा करो, ते फिर सारी उम्र लून तेल आटे का धंधा करते मर जाओ। मैं इस गाड़ी राते अपनी जिंदगी तो नहीं चलन देंगा। मैं कोई नवी जीवन जांच अपनावांगा, जिंदगी के तत्ता नूं कोई वक्री तरतीब देंगा।
0: पर पता नहीं केड़े वेले जिंदगी उसनू घेर के उसे गाड़ी राह उत्ते मजदार विच लै गई। उदा लूं लूं कबीलदारी विच चकड़िया सी ते बड़े डूंगे पानियां विच उदी ग्रिस्त दी नैया डकडोले खा रही सी। बाबू लोकनाथ ने पासा परत्या ते मुड़ अखां मीट लईयां, जिवें उह खिंड गए सुपने नूं मुड़ जोड़ना चाहुंदे सी। असलियत दी रुखी ते खुरदरी चट्टान नाल टक्कर मारन तों पहलां बेफिक्री ते मदहोशी दी दुनिया विच डुब जाना चाहुंदा सी, पर उहनूं

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, नक्सलवाद की हर निशानी को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई साझेदारियां और विकल्प तलाश रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त

सेक्रेटरी जॉन हिली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद और फिनटेक बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवोल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया कि भारत का मीडिया मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज मुलाकात करेंगे और नागालैंड सरकार के युवा संसाधन तथा खेल विभाग को जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉट सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। और हंस मैं इसलिए रही

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय की। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुनोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दुपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत। अज तुसी मदन लाल चंचल ते साथियां वल्लों माता दियां भेंटां सरवण करोगे। दूजी सभा च 4 दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 ते प्रोग्राम सुनोगे तवे

ज्वाला रेडियो। साढ़े चार बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम साढ़े पांच बजे सरवण करोगे साढ़ा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम साढ़े छे बजे प्रोग्राम सुनोगे किसान वाणी। अज इस विच खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, खेती किते च औरतां, ए विशेष प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुनोगे। सात बजे तुसी पंजाबी गीत सुन सकते हो। 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा से देश सेवा। सात बज के 45 ते सुनोगे समाचार दर्शन। 7:55 ते गजलां दा प्रोग्राम सुनोगे आबशार। 8 तुसी फिल्म संगीत सुन सकते हो। 8:10 ते सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा तक, पेशकश होएगी पूनम रानी दी। 8:30 दा वेला होएगा पंजाबी खबरां दा। 8:40 ते पंजाबी गीतां दा लुत्फ उठाओगे। साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे रात 8:45 ते समाचार संध्या, 9 न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड ते 9:45 ते इनसाइट्स। रात 10 दियां मुख खबरां तो बाद 10:02 ते सुनोगे शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च, अरुणदीप सिंह दा शास्त्रीय गायन राग बागेश्वरी विच। तबले ते संगत कीती मोहनदीप बावरा ने, हारमोनियम ते राकेश कुमार ने। 10:30 तुसी फोन इन ते व्हाट्सएप ते आधारित प्रोग्राम सुनोगे तुहाडी फरमाइश। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 दा समा रहेगा सौगात दा। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां। एसी आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने, कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी मिनिस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

0: पीसा तक दी नमी वाले झोने दी कीमत तुरंत पा सकन।
1: सुक्का झोना लियाओ दाने दाने दी कीमत पाओ।
2: लाओ जी आज तुहानु दसांगा वायरल ना होने दे तरीके।
3: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे आ ते तू वायरल ना होंदा।
2: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
5: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
8: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा तुहानु फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
9: ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰਾ ਹਟਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਚਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਰੁਣ ਜੈਨ, ਸਚਿਨ ਜਿਗਰ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਫਰੀਦੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਗੀਤਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਔਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਸਚਿਨ ਜਿਗਰ।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फौजी वीरो अंतराल तो बाद एक बार फिर तो हाजिर। लो सुनो हीरो फिल्म दा गीत। आवाजा मनहर उदास ते लता मंगेशकर दिया। इस गीत नु लिखिया आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशक ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इफ्तिताह किए गए नए प्रोजेक्टों में लेह में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे की नई मुसाफिर टर्मिनल इमारत शामिल है, जिसे 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये जदीद टर्मिनल 23,800 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर मोहित है और ये सालाना 35 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर सकता है। वजीर आजम ने सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ की जानिब से तामीर करदा 298 किलोमीटर तवील निम्मू पदुम दारचा सड़क को भी मुल्क को वक्फ किया। जनाब मोदी ने 9 मेगावाट वाले हानू छोटे पन बिजली प्रोजेक्ट और 66 किलो वाट की डबल सर्किट दा हानू खालतसी तरसील लाइन का भी इफ्तिताह किया।
0: आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था से रोशनी तो आती है, लेकिन रोशनी से सिर्फ घर नहीं जीवन भी रोशन हो जाता है। जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, गांवों में कितने नए काम संभव हो जाते हैं, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा।
1: ये प्रोजेक्ट बिजली से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करेंगे, लद्दाख के बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाएंगे। जनाब मोदी ने लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में तामीर करदा 40 आबी जखायर का भी इफ्तिताह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हिंदुत्व से इस्लाम या किसी दिगर गैर हिंदू मजहब में मुंतकिल होने वाले अफराद पसमानदा तबकों के जुमरे के तहत रिजर्वेशन के फायदों का अज खुद दावा नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की एक दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की एक बेंच ने कहा कि किसी शख्स की पहली वाली जात से मुतालिक समाजी पसमानदगी की परेशानियों को तब्दीली मजहब के बाद जारी नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर हिंदू समाजी निजाम में दाखिल हो जाने से किसी नोटिफाइड पसमानदा तबके वाली बिरादरी में इसकी मुसद्दका रुकनियत नहीं बन जाती। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत छत्तीसगढ़ में उन कबायली लोगों को मसनू आजा और दिगर इमदाद फराहम कर रही है जो नक्सलिज्म की वजह से माजूर हो गए हैं। हुकूमत उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद दे रही है। जनाब शाह ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में माजूर अफराद को इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये तकरीब सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मुतासर लोगों की मदद उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग बावकार तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस साल 31 मार्च तक मुल्क से नक्सलिज्म का खात्मा करने का पुख्ता अज़्म कर रखा था। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि नक्सलिज्म अब खत्म हो चुका है। बीजेपी की ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और जेएनयू में मुबैना जिंसी हरासानी के एक मामले के सिलसिले में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट बिमोल अकोयजम के मुतालिक एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दग्गू बाटी पुरंदेश्वरी ने कहा कि जेएनयू की दाखिली कमेटी ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट को कसूरवार पाया है। उन्होंने मजीद कहा कि वफद ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो इस मामले को अखलाकियात से मुतालिक कमेटी को भेजें और इस बात का जायजा लें कि आया कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट को लोकसभा मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम देनी चाहिए या नहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम मुहिम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की एक अहम मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। यह मुहिम बेटियों को बाइख्तियार बनाने और हरियाणा में सिन्फी

प्रोग्राम च अगला गीत तुहाडी नजर कर रही हां शेर शाह फिल्म दा आवाजां जुबिन नौटियाल ते असीस कौर दियां गीतकार ते संगीतकार ने तानिश्क बागची

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
1: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ ते तू वायरल ना होण दा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब

0: स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: फौजी वीरों प्रोग्राम च आखिरी गीत तुहाडे नजर कर रही हां एयरलिफ्ट फिल्म दा। आवाजा अमाल मलिक, तुलसी कुमार और गीतकार ते संगीतकार कुमार अमाल मलिक।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीत कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण

0: पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार

0: ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने

0: किले पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
3: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
2: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
4: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च आज दे गायक कलाकार ने मदन लाल चंचल ते साथी। लो सुनो इन्हां दी आवाज च गाई माता दी पेंट, मैया तेरियां जोतां तो मैं वारे वारे जां।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते ट्रेन कीता है यार पंजाब ते चिट्ठी बहुत वड्डी लिखी है जी इन्होंने बहुत सारी शिकायतें ने विच ते बहुत सारा प्यार भी है बहुत कुछ लिखे है जी टाइम कढ़ के चिट्ठी लिखी है ते लिखण वाले ने जी बलविंदर बिल्ला माधोपुरी बत्तियां दा चौंक है इन्हां दा पिंड है इन्हां दा माधोपुर ते जिला है श्री फतेहगढ़ साहिब ते सारा परिवार कहिंदे इस चिट्ठी दे विच साडे नाल शामिल है ते पिंड हैगा है जी पंजौनिया ते लिखण वाले ने जी जलौन तो उत्तर प्रदेश तो चिट्ठी सतेंद्र कुमार चंसोलिया ते आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया ने दिना ते मोहल्ला फतेहगढ़ पै जांदे लुधियाणा तो है चिट्ठी विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी वीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममतापुरी मेगा पूजा ते गगन कपूर गंजन कपूर ते लालसा कपूर ते रमन

कनाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पहली डेजी, अरुणपुरी की चिट्ठी। अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गफिया मल्होत्रा, भाई सुचा पाठक। फरमाइश सारे की जैजी पी साथियों की खूबसूरत आवाज।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही लगभग 3,350 करोड़ रुपए दे पांच वड्डे विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत कीती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत लगभग 100 देशां नूं स्वदेशी रक्षा उत्पादां दी बरामद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता है कि हिंदू धर्म छड़ के इस्लाम जां किसे होर गैर हिंदू धर्म विच जान वाले व्यक्ति पछड़ी श्रेणी वर्ग तहत राखवें करन दे लाभां दा दावा नहीं कर सकते। पंजाब विच बीते मंगलवार मानसा विच नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा दे कतल अते सूबे विच फैले नशियां दे खतरे दे विरोध विच अज दित्ते गए बंद दे सद्दे नूं रलिया मिलिया हुंगारा मिल गया है। परविंदर सिंह कतल मामले च मानसा दे थाना सिटी 2 दी एसएचओ बेअंत कौर नूं मुअत्तल कर दिता गया है। सरकार ने खंड डीलरां अते भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन कर दित्ती है अते भंडार हद 1,000 क्विंटल तय कीती है। मोहाली पुलिस ने गैर कानूनी हथियार सप्लाई मॉड्यूल का पर्दाफाश करदे तीन मुलजमान 10 पिस्तौलां अते असले समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब राज खुराक कमिशन ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों लई मिड डे मील योजना नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण ते जोर दिंदियां रसोईयां दी साफ सफाई सैनिटेशन संबंधी ढुकवियां सहूलतां अते साफ सुथरे पखानियां ते विशेष ध्यान देण लई किया है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच भारी बारिश लई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब दे कई जिलियां विच अज मी पै गया। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप दे ग्रीको रोमन

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है तुहाडे लई पंजाबी गीत। लो फिर प्रोग्राम च अगला गीत असानू माण वतना दा। इस फिल्म दा आवाजा हरभजन मान ते जसविंदर नरूला दियां, गीतकार ने बाबू सिंह मान ते संगीतकार जयदेव कुमार।

पेश है पंजाबी फिल्म संगीत च आखिरी गीत सरबाला जी फिल्म चो लिया। आवाजा एमी वीर कौर निमरत खेरा दियां, गीतकार ने हरमनजीत सिंह और संगीतकार ने एवी सरा।

0: गुरबाणी विचार। इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन पूर्व 27 अक्तूबर सचखंड श्री दरबार साहब विखे श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा। उहदे संबंध विच वड्डे जिहड़े प्रोग्राम लीके गए आ अमृतसर की धरती ते समूह सिंह समावां ते धार्मिक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल जिथे अमृतसर शहर विखे गुरु घरां दे विच सवेरे 7 बजे तो 10 बजे तक सारे गुरु घरां दे विच प्रोग्राम लीके गए आ। ते इस तरह मंजी साहब विखे बच्चियां दे शब्द कीर्तन, गुरबाणी कंठ, गुरमुखी लिखाई प्रोग्राम जिहड़े आ लीके गए आ। ते खालसा कॉलेज विखे भी ये समागम जिहड़े आ हो रहे आ। उहदे तहत 25 ते 26 अक्तूबर मंजी साहब विखे जिथे राग दरबार ते पड़ताल शब्द गायन दे भी कीर्तन दरबार होणगे। 26 अक्तूबर अमृतसर शहर विखे नगर कीर्तन भी कढ़िया जाएगा। 27 अक्तूबर श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते बाबा टल राय विखे जलौ सजाए जाणगे। उत्थे सारा दिन जिहड़े कीर्तन दे समागम चलणगे ते नाल रात नूं आतिशबाजी होएगी। तिन्हां समागमां दे विच कथा दे तौर ते भाई पिंदरपाल सिंह ते भाई बंता सिंह भी हाजिरी लवाउणगे। मेरी समूह संगत नूं बेनती कीती जांदी है कि इन्हां समागमां दा आपां लाहा लईए, वध चढ़ के श्री दरबार साहब विखे हाजिरी भरीए ते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।

मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किच नाही, जम नहीं आवे नेरे। अकाल पुरख प्रभु पूरा वैद है, ओ अपने प्यारियां दे सारे दुख निवृत्त कर दिंदा है, इथों तक कि इंसान जन्म अते मरण दे गेड़ तो भी मुक्त हो जांदा है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जमकी फंदा। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। प्रभु दे पै विच रहण वाले जेड़े प्राणी उस नारायण प्रभु ते भरोसा रखदे हन, उस नूं अंग संग समझदे हन, उना तों जम वी कोहां दूर रहिंदे हन। नाल नारायण मेरा, जम दूत ना आवे नेरा, कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे। इस शब्द का गायन कीता है भाई ओंकार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमरीका के लास वेगस में

0: विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण तुहानू दस्सदे अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 बजे किसान वाणी प्रोग्राम चाज सुनोगे खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, खेती किते च औरतां दा विशेष प्रोग्राम। जन सेवा से देश सेवा दा समा रहेगा 7:10 ते साढ़े दिल्ली केंद्र तों। सात बज के 55 मिनट ते आपशार प्रोग्राम च चंद गजला फरमाओगे। 8 बजे फिल्मी संगीत होएगा। 8:10 ते सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा तक

रात 10:02 ते शास्त्रीय प्रोग्राम सुर साधना चाच सुनोगे शास्त्रीय गायन राग बागेश्वरी कलाकार होंगे अरुणदीप सिंह उना नाल तबले ते संगत करनगे मोहनदीप बावरा हारमोनियम ते संगत करनगे राकेश कुमार तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम होएगा रात 10:30 शाम 6:20 ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां 8:30 सुनोगे पंजाबी च खबरां 8:45 ते दिल्ली केंद्र तो होणगियां समाचार संध्या 9:00 न्यूज़ एट 9 9:15 स्पॉटलाइट 9:30 कंट्री वाइड 9:45 ते इनसाइट रात 11:05 ते दिल्ली केंद्र तो अंग्रेजी समाचार रात 11:00 हिंदी समाचार ए सी आज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा

0: जागरूकता पहल हो जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, आओ सुनते हैं देश का हाल।

0: आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो तुसी इस वेले सुन रहे हो देश गान वेला है छोटे जे अंतराल दा।
1: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 1 अक्तूबर

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ

0: जागरूकता पहल। और जानकारी लई सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च एशियन खेडा 2026 च हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गलबात कीती। कहा, खिडारियां ने तमगे जित के देश दे करोड़ां देशवासियां दा मान वधाया है। सर्वोच्च अदालत दा फैसला, इस्लाम धर्म अपनाउण वाले हिंदू पछड़े वर्गां लई राखवें करन दा लाभ नहीं लै सकते। नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह छोटा दे कतल मामले विच मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार ते उसनू पनाह देण वाले साथी विपिन गर्ग नू 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत विच भेजा गया। केंद्र सरकार वल्लों फाजिलका च सीन दे पक्के हल लई पहलकदमी, बीजेपी पंजाब दे सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कीता स्वागत। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर ते मोहाली च दो वक्खो वख कारवाइयां च 23 पिस्तौल, 2 हथगोले, 1 असॉल्ट राइफल ते गोला बारूद बरामद कीता। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ते ग्रीको रोमन फाइनल च चांदी का तमगा जीत के इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च एशियन खेडा 2026 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गलबात कीती। इस मौके संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि खिडारियां ने तमगे जीत के देश दे करोड़ां देशवासियां दा मान वधाया है।
2: आपने 140 करोड़ देशवासियों को गौरव का मौका दिया, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता अगर कुछ होती है तो वो है तिरंगे की शान बढ़ाना। आपने तिरंगे की शान बढ़ाई है, तिरंगे का मान बढ़ाया है, और इसलिए आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों की सफलता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: जिक्र योग है कि भारत जापान के आईची नगोआ च हुई एशियाई खेडा च तमगा सूची विच चौथे स्थान ते रहा, जिस विच 21 सोने, 27 चांदी ते 37 कांसी दे तमगे शामिल ने। सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छाड़ के इस्लाम या किसी होर गैर हिंदू धर्म च चले जाते हैं वह पछड़ी श्रेणी तहत राखवीकरण के फायदों का दावा नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पटीशन खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ते जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि धर्म बदलन तो बाद किसी पुरानी जात के समाजिक पछड़ेपन नूं अगे नहीं बताया जा सकता। अदालत ने ऐलान किया है कि संविधान की धारा 16(4) के तहत मिलन वाले कानूनी फायदे सिर्फ किसी व्यक्ति के धर्म बदलन तो पहला वाले दर्जे के आधार पर नहीं दिते जा सकते। अदालत ने यह भी दोहराया कि हिंदू सिख या बौद्ध धर्म नूं छड्ड के किसी होर व्यक्ति नूं अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा के कतल मामले विच मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार ते उसनू पनाह देने वाले साथी विपिन गर्ग नू 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत विच भेज दिता गया। मानसा पुलिस ने अज दोवां नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मुख न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत विच पेश करके रिमांड हासिल किया। पंजाब सरकार ने मानसा की SHO बेअंत कौर नू भी मुअत्तल कर दिता है। इस दौरान पंजाब बंद का मिलिया जुलिया हुंगारा मिलिया ते इह शांतिपूर्वक ढंग नाल समाप्त होया। वेरवे नाल इक रिपोर्ट।
3: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ, ਜਲੰਧਰ।
1: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ

0: प्रोग्राम किसानवाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित
2: अते 60 साल की उम्र वालों नू 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता दी मेहनत नू समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी
0: जय हिंद किसान वीरो ते भैणो आकाशवाणी जलंधर दे किसानवाणी प्रोग्राम विच आप सब दा स्वागत है किसान वाणी दे अंतर्गत असी महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़े तक लैके आने खेती संदेश सरकार दीआं स्कीमां बारे गल्लां बातां आप सब नूं दसदे हां ते जानकारी लैने हां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बारे किसान वीरो खेतीबाड़ी साडे देश दी आर्थिकता दा अहम आधार है किसानां नूं आधुनिक खेती तकनीकां नाल जोड़न खेतीबाड़ी दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन ते खेती नूं वधेरे लाहेवंद बनाउण लई सरकार वल्लों बहुत सारियां योजनावां चलाईयां जा रहियां ने ते इन्हां ही विचों इक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या फिर RKVYV कहा जांदा है ते इस योजना दा मुख उद्देश राज्यां विच खेतीबाड़ी ते इस नाल जुड़े होर खेतरां दा विकास करना है इस अधीन खेतीबाड़ी दी उत्पादकता वधाउण आधुनिक तकनीकां नूं उत्साहित करन खेती नाल संबंधित बुनियादी सहूलतां विच सुधार करन ते खेतीबाड़ी नूं टिकाऊ ते लाहेवंद बनाउण लई प्रोजेक्टां नूं सहायता दित्ती जांदी है इस योजना अधीन राज सरकारां वल्लों तैयार कीते प्रोजेक्टां दे अनुसार खेतीबाड़ी नाल संबंधित वख वख गतिविधियां नूं उत्साहित कीता जा सकदा है इन्हां विच खेती मशीनीकरण सिंचाई दीआं सहूलतां फसलां दी कटाई तों बाद संभाल भंडारण मंडीकरण खेतीबाड़ी विच नवीआं तकनीकां ते खेती आधारित उद्योगां नूं उत्साहित करना शामिल है इस नाल खेतीबाड़ी दीआं सहूलतां विच सुधार फसलां दे नुकसान नूं घटाउण ते किसानां लई आमदन दे नवे मौके पैदा करन विच मदद मिल सकती है इस योजना दे लाभ सहायता दीआं शर्तां ते अर्जी देण दी प्रक्रिया राज प्रोजेक्ट ते संबंधित गतिविधि अनुसार वख वख हो सकदी है इस लई किसान वीर अपने जिले दे खेतीबाड़ी विभाग दे दफ्तर या फिर संबंधित खेतीबाड़ी अधिकारी नाल संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकदे ने ते किसी भी सहायता लई अर्जी देण तों पहला योग्यता लोड़ींदे दस्तावेजां ते लागू नियमां दी पुष्टि जरूर करो खेतीबाड़ी नूं आधुनिक ते लाहेवंद बनाउण लई सरकारी योजनावां दी सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है किसान वीरो तुसी वी अजिहीआं योजनावां बारे जानकारी प्राप्त करो ते अपने खेतीबाड़ी दे काम विच लोड़ अनुसार इन्हां दा लाभ लैण दी कोशिश करो इस जानकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बारे हर दिन दा अपना एक महत्व हुंदा है और अज है 15 अक्टूबर हर साल 15 अक्टूबर नूं मनाया जांदा है अंतरराष्ट्रीय देहाती औरत दिवस या फिर महिला किसान दिवस भी कहा जांदा है पेंडू ते किसान औरतां दे खेतीबाड़ी भोजन सुरक्षा ते परिवारिक देखभाल विच पाए जांदे योगदान नूं असीं सन्मानित करदे हां इस दी महत्ता इह है कि इह दिन देहाती खेतरां विच औरतां दे अधिकारां सिख्या सेहत सहूलतां ते समानता बारे जागरूकता पैदा करदा है पिंडां दीआं औरतां दी गल करिए तां उह पंजाब दीआं रीढ़ दी हड्डी ने जे पिंड दा मुंडा मेहनत दी मिसाल है तां पिंड दी औरत लड़की हिम्मत सहन शक्ति ते ममता दी मिसाल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नूं चला के ना सिर्फ अपना रोजगार चला रहियां ने बल्कि होरनां वास्ते वी इक मिसाल बन रहियां ने सवेरे सूरज चढ़न तों पहला उठना फिर चौके चुल्हे दा काम करके खेतां विच जा के काम करना ते काम भी खुशी खुशी करना ओ भी बिना थकावट दे ओ किसान भी ने मजदूर भी ने ते परिवार दी डॉक्टर ते टीचर भी ने ते पिंडां दी

नींबू तो है, खट्टा मीठा है, मसाले नींबू, और मिक्स अचार बनानी है, मिर्चा का भी, लाल मिर्चा का भी, हरिया मिर्चा का भी, भर के तकरीबन मैं सारे बना लेनी हूँ। पीए यू चू भी ट्रेनिंग ली, फिर उत्थे भी अपना किसान मेले दे विच जानी है, बहुत बड़े स्केल ते नहीं करती, इन्हां दे फ्रेंड सर्कल जो भी कोई टेस्ट करता फिर ओदे बाद साडे घर हो जाता है, या मेरिया फ्रेंड्स है वो मेरे तो पाउंदियां, गो उन्हां दे रिलेटिव्स हो गए, अचार पाना वो मैं आप पानी हाँ, वो मैं किसी की हेल्प नहीं लेंदी, वो हर किसी का अपना टेस्ट होंगे। मैं हम हैंडमेड सोप तैयार कर रही हूँ, मैं अभी भी ट्रेनिंग ली है PAU तो, सिर्फ मैं कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल तो रेडी किया है, तो 4 to 6 week बाद वो क्योर होंगे, फिर वो एज अ मेडिसन बन जाता है। मेरा सोप रेडी है, मेरी पैकिंग बननी है, बस ग्लो रखे RAGLOW जी हर्बल सोप होने पर, मैं मार्केट भी करूंगी, मैं ऑनलाइन भी करूंगी।

कमल खान दी आवाज़ ते सुन रहे सी खूबसूरत गीत या उगला गीत सुनते हैं। आवाज़ दिती है अमरिंदर गिल ने। गीत दे बोल ने उड्डे डोरिया ते फिल्म है इक वादा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल।
1: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चांडक जो प्रेसिडेंट IESA में हैं। अशोक जी आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
1: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
2: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमीकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती है और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे। और तीसरा, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं इंडस्ट्री को इसके लिए।
3: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया, और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशंस को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उसमें सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
2: पर ऐड करूंगा यहाँ पर, जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में

0: है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इसमें। इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।
1: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
2: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है।

0: इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
1: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
2: इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके, लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में, जिसे मैं कहता हूं डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशंस लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस बात से था इसका छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें करीबन 1000 टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2-3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4-5 साल लगते हैं जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का कंबाइनेशन देखना है, इसलिए कहता हूं कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनीज से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, मुझे बस पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्टवर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
3: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इस पे कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 2,25,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 इयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन

0: इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। और हमने जो यूपीआई का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है, और किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी। और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में है, जस्ट 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी। बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके। और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पे आपके एग्जाम्पल है यूपीआई। और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में, मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है। तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर का, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं या दूसरे आईटीआईज हैं, कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में, अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। और ये पूरे देश में चल रहा है मेरे ख्याल से, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और फाइनली यही हमारे देश की विकसित भारत बाई 2047 की उसकी जो अगर मैं कहूंगा फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
1: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
2: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिजाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहां पर हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं, वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था, एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीजों को भारत में कैसे लाए। और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है।

0: उसमें पार्शियल सक्सेस है, मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, ओसैट बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री, वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट $8 से $9 बिलियन का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो उड़ीसा में आ रही है, उन्होंने भी एक कोलैबोरेटर लिया। तो सिर्फ 2 प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं। ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में, जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिजाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिजाइन की, वो थोड़ी कैप्टिव डिजाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिजाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाए और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है अभी। जैसे अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है, उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो सीसीटीवी है, जो कैमरा लग रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो क्लियर कट टू समराइज मैं कहूंगा, 2 मुद्दे हैं जहां पर मैं, हमें मेन चुनौतियां हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाए या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें, लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकाल कर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी, तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपने शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
2: तो आप सही बोल रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता, कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं। कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है। और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है

0: उसके लिए पूरा ये मैं कह रहा हूं कि आज देश में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की। और
1: जी
0: इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती है, बड़ी कंपनीज को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो उनको क्या चाहिए, पावर कनेक्शन चाहिए और सारी जो उनको अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, या सारे अप्रूवल्स के साथ वो पावर कनेक्शन उनको मिल जाए, उनको जगह मिल जाए जिससे कि वो अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर सकें। हालांकि उसमें एक टाइमलाइन रख दी जाए कि अगर आपको हम दे रहे हैं तो इतने टाइम में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली वो डिपेंड करे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बेसिस पे जहां जहां जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जो चीज अवेलेबल है उसी टाइप की अगर कुछ इंडस्ट्रियल अगर क्लस्टर बनाए जाएं जो कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। तो हमें जरूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की, और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है जिसमें कि डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो करना है। तो मेरे ख्याल से इस पे एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ एफटीए कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 ट्रिलियन मार्केट करीब खड़ा कर दिया है, और ईयू है, यूके है, न्यूजीलैंड है, अपना जीसीसी कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे एफटीए साइन हो गए हैं। बट उस एफटीए का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हों। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है। और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्लियर तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है, बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि एमएसएमईज को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है एमएसएमईज, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें जरूरत है इस देश में। सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीजें हैं जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स इजियर, उसमें ज्यादा आसान है, तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस वल्नरेबल ग्रुप में आए। आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी एमएसएमईज ही होते हैं।
2: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं। विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें, है सही बात है, 5 बिलियन $8 बिलियन वगैरह, लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफी चीजें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिजाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई है। तो हमें ये एक मन में और माइंड

0: पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को भी इसमें अवसर है। अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूंगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था, उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन। इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिजाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए। उसके तहत करीबन 65,000 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है। वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपने अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17, 18, 19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया। बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाए हैं, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों के लिए अवसर है। अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है, तो वो मशीन निर्माण के लिए रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं। अगर किसी की रुचि विज्ञान में है, तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है, तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे। तो इसमें मैं कहूंगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए, पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस एक जरूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूंगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है, मैं उनसे कहूंगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन जो टॉपिक है, ये हमेशा चलते रहता है। मैं कहूंगा वो हमारे साथ काम करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की जरूरत है, और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे, तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी।
1: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
2: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इसमें स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है। बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही एक चीज जरूरी नहीं है। इसमें ये भी एक जरूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है, और IPR के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीजों में अगर आपने देखा, तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब चाइना प्लस वन की बात कर रही है, तो उसमें इंडिया जो है नंबर 1 उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं, जिसमें G20 में हमने लीड ली है, और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं, बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है, एशिया में आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है। चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो, अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया।

0: और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं, और हमारा एक एक स्टेप है, क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है, वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं, और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा, और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई है, तो उसपे भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं। भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश
1: जी
0: जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड
0: जी,
1: कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
2: मेरा संदेश यह है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, यह भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी
2: हमें इस
1: बिल्कुल
2: नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं
1: एब्सोल्युटली
2: कहूंगा कि हम अभी 4 C पर लगे हैं। 4 C कौन से? इसमें एक है क्रेडिबिलिटी। हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ उसके
1: जी
2: तहत।
1: जी जी
2: पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है, सेंट्रल
1: जी
2: गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स,
1: जी
2: और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का। तो ये
1: वंडरफुल
2: 4 C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम
1: एब्सोल्युटली
2: सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ
1: जी
2: मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत
1: जी
2: जल्दी आगे एक्सप्लोर होके सफल होगा।
1: थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।
0: बहुत बहुत
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद। थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ।
5: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼

0: ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई।
1: सरकार नशा मुक्त युवा ते ध्यान केंद्रित कर दिया, खास तौर ते पंजाब नो नशिया दी अलामत तो आजाद कराउन लई पूरी वाल आ रही है। इस संबंध विच धार्मिक आगुआं दी जागरूकता पैदा करन च भूमिका होर भी अहम हो जाती है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने भी हाल ही विच नौजवानों नू नशिया तो बचाउन दा सदा दिता।
2: जय माता दी। मैं गगन शर्मा जलंधर तो बोल रहा हाँ। आज मैं अपने सारे नौजवान बच्चों नू एक बेनती करना चाहता हाँ। ए मनुखी दे परमात्मा दी दित्ती हुई बहुत वड्डी दात है। ए मनुखी जीवन सानू बहुत मुश्किलां नाल मिलदा है। नशा सिर्फ शरीर नू ही नहीं खत्म करदा, सगो साडी बुद्धि, परिवार अते आत्मा दा भी विनाश कर दिंदा है। अगे आओ, सेवा नाल जुड़ो, मंदिर होवे, समाज होवे जां किसी लोड़वंद दी मदद, निस्वार्थ सेवा विच उह सकून अते आनंद है जो दुनिया दा कोई नशा नहीं दे सकदा।
3: मैं आचार्या नरेंद्र मोहन, जे नशा एक इंसान नू अपनी लपेट विच लैंदा है तां इस दी मार अक्सर पूरे परिवार नू सहनी पैंदी है। सेहत खतरे विच पैंदी है, कमाई बर्बाद हो सकती है अते प्यार भरे रिश्तियां विच दरारां पै सकदियां ने। नशा दिमाग दी कार्ज प्रणाली अते फैसला लैण दी समर्था नू प्रभावित करदा है। इस नाल सेहत भी बिगड़दी है। नशे तों मुक्ति लई डाक्टरी सलाह, काउंसलिंग अते परिवार दा सहयोग बेहद जरूरी है। नशा करन वाले व्यक्ति नू नफरत नहीं सहारा दिओ।
1: आओ सुनते हाँ पंजाब दे नौजवानां ते आम लोकां दा इस संबंध विच की कहना है।
4: मेरा नाम है गुरमुख सिंह, मैं जलंधर तो बोल रहा। जे साडे विचों कोई एक दिन भी चुप रहे ना ते परेशान दिखे तां फिर असीं उस नूं ना कल्ला नहीं छड्डदे ते असीं पुछदे आं, उहदे नाल मजाक करदे आं ते उहदा मूड ठीक करके ही हटदे आं। दोस्ती दा मतलब सिर्फ हसना नहीं हुंदा, दोस्ती दा मतलब इह नहीं कि तुसीं इकट्ठे हस लिया, सगों जदों साथी डगमगाउण लगे ना, जदों साथी डोलन लगे ते उहदा हत्थ फड़ के सही राह ते वी लिआउणा पैंदा वा। ते भावें नशा किसी भी तरां दा होवे, असीं उस नूं अपने लागे नहीं आउण दिंदे। साडी यारी, खेडां दी तैयारी, नशियां ते पवेगी भारी।
5: मेरा नाम रजनी है और मैं मोहाली तो बोल रही हूँ। मैं गृहणी हाँ। अजकल जिसका बच्चा नूं हुंदा टेंशन हुंदी कि असीं अच्छा कमाईए, अच्छा अगे वधीए, इस टेंशन दे कारण नशे वल लग जांदे ने, अपना खान पीन दा ख्याल लगदा। कई बार कई बच्चे जिहड़े हुंदे रात दी ड्यूटी करदे ने, नाइट शिफ्टां ला लैंदे ने और इस दे कारण उहनां दा सारा शेड्यूल चेंज हो जांदा। इस करके सानूं चाहीदा कि बच्चां वल ध्यान रखिए कि फालतू के बच्चे इधर उधर ना ख्याल रखन, अपने ना जान ते अपना खान पीन दा ख्याल रखन, अपनी सेहत दा ध्यान रखन। माँ प्यो नूं चाहीदा असीं अपने बच्चे दी हरकतां ख्याल रखिए।
6: जगह जगह नौजवान जेड़ा है नशियां दे फसिया होया है। इस वास्ते समाजिक जथेबंदियां, गुरु वर्ग, टीचर, धार्मिक जथेबंदियां सब नूं अगे आ के इन्हां बच्चियां नूं नशियां तों कढ़न वास्ते मुकाबला करने पैण। समाज ही खड़ा होएगा
1: इस प्रोग्राम विच जिलिया तो सहयोग रहा। मोहाली तो मनोज गिरदर, फाजिलका तो जैलेश चटाई, पठानकोट तो रजनीश ते पटियाला तो राव वरिंदर। इस नाल ही समाचार दर्शन दा ए अंक खत्म हुंदा है। अगले अंक विच किसे होर विषय ते होएगी गलबात, उदो तक लई मैनू दियो इजाजत, नमस्कार। पेशकारी सहायक मनप्रीत सिंह ते अमनप्रीत कौर, पेशकश राजेश बाली।
7: हुणे तुसीं सुन रहे सी समाचार दर्शन। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ सुनदे हां चंदन दास दी आवाज़ च आबशार प्रोग्राम जी गज़ल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रात दे 8:10 हो रहे ने। आ सुनते हैं जन सेवा तो देश सेवा तक, पेशकश पूनम रानी। इस दा प्रसारण तुसी साडे आकाशवाणी लुधियाना, आकाशवाणी बठिंडा ते आकाशवाणी बठिंडा तो नालो नाल सुनोगे।

0: आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है।
1: पीएलआई स्कीम, इस स्कीम तहत अलग अलग क्षेत्र विच लखां करोड़ां रुपए का विदेशी निवेश आया है। इस नाल MSMEs नूं भारी वधावा मिलिया है। 31 मार्च 2026 तक मैनुफैक्चरिंग दे 14 प्रमुख सैक्टर्स दे विच लागू PLI योजना दे तहत 2.40 लाख करोड़ दा निवेश दर्ज होया है। 22.66 लाख करोड़ दा उत्पादन ते विक्री, 15.20 लाख करोड़ दा निर्यात होया है। इस नाल जुड़े 14.15 लाख तो ज्यादा लोगों नूं सीधे या असिधे रूप विच रोजगार मिलिया है। स्टार्टअप्स ते रोजगार, मेक इन इंडिया महज वड्डी कंपनियां दी ही कहानी नहीं है, बल्कि भारत विच स्टार्टअप मूवमेंट स्थापित करन वाली पहल भी है। दुनिया विच सब तो तेजी नाल वाधा होया सब तो तीजा वड्डा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत विच ही है, जिस नाल देश विच लखां नौजवानां नूं रोजगार मिल रहा है। 38,600 तो ज्यादा स्टार्टअप GEM ते ऑन बोर्ड हो चुके ने। मेक इन इंडिया की उड़ान हुण स्पेस ते भी पहुंच चुकी है। 2014 विच देश विच सिर्फ एक ही स्पेस स्टार्टअप सी, प्राइवेट सैक्टर दे लई एक खेतर पूरी तरह बंद सी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल ते इस सैक्टर दे बंद दरवाजे नौजवानां ते प्राइवेट सैक्टर दे लई खोल दिते गए ने। इसका सुखद नतीजा सामने आया है। देश विच हुण करीब 440 स्टार्टअप्स काम कर रहे ने। भारत दे स्पेस सैक्टर विच निजी निवेश 2021-22 तो लगभग 6 गुणा वध गया है। मेक इन इंडिया ते इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दे तहत भारत ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन ते कमर्शियल मैनुफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है, जिस तहत 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए ने। देश दे 6 राज्यां विच ए मंजूरी मिली है। 300 तो ज्यादा चिप डिजाइनस विकसित होए ने। इस खेतर विच भारत ने कई देशां नाल अंतरराष्ट्रीय साझेदारी भी कायम कीती है। नाल ही फार्मा इंडस्ट्री विच ई उत्पादन समर्था दा निर्माण होया। मेडिकल उपकरणां च तकनीकी निर्माण नूं वधावा मिलिया। टेलीकॉम विच मजबूत 4G 5G उपकरण इकोसिस्टम स्थापित होया। ऑटो ते ईवी विच डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन वधिया। वंदे भारत जिही हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेनां तो लैके रेल इंजन्स ते एडवांस्ड मैट्रो कोचेस दा निर्माण हुण साडे देश विच ही हो रहा है। सो इह सन कुछ वड्डे बदलाव जो मेक इन इंडिया विजन तो बाद देखे जा सकते ने। पर मेक इन इंडिया दा अर्थ सिर्फ वड्डियां फैक्ट्रियां नहीं, इसका अर्थ है भारत दी धरती ते बने उत्पाद, भारत दे लोकां दी मेहनत, भारत दी तकनीक ते भारत दी काबिलियत स्थानक तो विश्व पद्धर तक। जरा अपने आले दुआले नजर मारो, साडे देश विच किन्ने ही लोग अपने हत्थां नाल चीजां बनाउंदे ने, चाहे ओह पंजाब दी फुलकारी होए या फिर लखनऊ दी चिकनकारी, कश्मीर दी कढ़ाई होए या वाराणसी दी बनारसी बुनाई, जयपुर दी हथ कला या मुरादाबाद दी पित्तल कारीगरी। देश के वक् वक् हिस्सों में बनते मिट्टी के भांडे, लक्कड़ की कला, धातु दस्तान से हाथों नाल बुने कपड़े, ये सारा साड़ी सदियां पुरानी विरासत का हिस्सा है। पर जो ये स्थानक कला नवे बाजारा तक पहुँचती है तो एक कारीगर की मेहनत को नवी पछाण मिलती है। उसकी कला सिर्फ उसके पिंड तक सीमित नहीं रहती, वह शहर तक पहुँचती है, देश के होर हिस्सों तक पहुँचती है तो फिर विदेशा तक भी पहुंचती है। एक छोटे जे पिंड दे कारीगर दे हत्थां तो निकली वस्तु जो दुनिया दे किसी होर कोने विच पहुंचती है तो उस दे नाल पूरा भारत जांदा है। इसलिए मेक इन इंडिया सिर्फ फैक्ट्री विच बनदी वस्तु दा नाम नहीं, बल्कि इह उस मिट्टी दा नाम है जिस विच चक्का घूमदा है, इह उस धागे दा नाम है जिस नाल फुलकारी सजदी है, इह उस लोहे दा नाम है जिस तो खेती दा संद बनदा है, ए उस लक्कड़ दा नाम है जिस तो कारीगर अपनी कला नूं रूप दिंदा है, ए उस औजार दा नाम है जिस ते साडी सुरक्षा हुंदी है ते

जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल।

0: हुनु त छि सुनरेसी जनसेवा तो देश सेवा तक पेशकशी पूनम रानी।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बही, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुंह मिठा करन लगियो, नौकरी लागे लग दिया, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
3: हेलो,
4: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबने तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते DTA दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। रात दे 8:30 हो रहे ने, सुनदे आ पंजाबी च खबरां।
7: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के नाम मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक आलमी खेड महाशक्ति बनने लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहाती औरतों के आर्थिक शक्तिकरण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। चोन कमिशन ने पंजाब समेत 17 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को वोटर सूचियों की एक विशेष संखेप सोध SSR करने के निर्देश दिए। पंजाब च नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह चोटा के कतल मामले में मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार ते उसनु बना देने वाले साथी नु 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। रक्षा मंत्रालय वालों भारतीय वायु फौज लिए GZ-7C संचार उपग्रह और भारतीय समुद्री फौज लिए तारपीडो वरुणास्त्र की खरीद

0: ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ। 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 7 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ, 9:30 ਵਜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ, 9:45 ਤੇ ਇਨਸਾਈਟ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य

0: जारी किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A. Ambarasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय

0: मंत्रालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: We introduce the Give It Up campaign seeking the cooperation of the public in voluntary giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
2: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय

0: धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
1: पहले जब चूल्हा पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती हूं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है, और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है, और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court if alleged SIR irregularities, also seeks poll panel's reply if alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 7.

0: ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम। रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में MSP के अपर महानिदेशक DP श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में आप सभी अवगत होंगे और खासतौर पर जो हमारे किसान श्रोता हमें सुन रहे हैं वो तो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं कि जो खेतों में फसल की पैदावार होती है, जब वो पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जिससे किसानों की आय भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सरकार ने बीते वर्षों में सीमित फसलों से हटाकर कई महत्वपूर्ण
2: फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP की गारंटी दी है और इससे देश भर में जो फसलों का विविधीकरण है या दूसरी फसलों की ओर किसानों का जो रुख है वो बढ़ा है, खासतौर पर तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर। तो आज हम कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है, वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में MSP की घोषणा की है, उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में MSP के अपर महानिदेशक

0: डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें जिनकी हम चर्चा करें, जिस पर एमएसपी की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने इस मंत्रिमंडल के फैसले में देखी है, एक तो सैफ्लावर जिसे कुसुम कहते हैं हम, इसमें प्रति क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफ्लावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को, और खासतौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
1: हर साल भारत सरकार 22 फसलों की एमएसपी अनाउंस करती है
0: जी।
1: इसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है। और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है। और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूं, जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली जौ, इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना, इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर की एमएसपी अब 7390 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड सरसों, इसकी एमएसपी अब 6613 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 413 रुपए ज्यादा है। और सफ्लावर कुसुम की एमएसपी अब 7215 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तिलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है, तो इससे जो विविधीकरण जैसा आपने जिक्र किया डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
0: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है, दालों का ही अगर हम जिक्र करें तो सरकार का फोकस है कि जो दालों का उत्पादन है वो देश में बढ़े और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो। मसूर की दाल का आपने जिक्र किया, 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार, और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है, यानी जो हमारा 50% तक से ज्यादा का लक्ष्य था उसे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
1: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज है, दाल है, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है,
1: और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी हम ही लोग करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और इसके लिए आप देख सकते हैं, एक तो एमएसपी का अधिक रखना दालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक दलहन की उत्पादन करें, और इसके अलावा भारत सरकार भी एक दलहन मिशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो 3 तूर, उड़द और मसूर है, इसकी खरीदारी अब 100% भारत सरकार करेगी, नैफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है, इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है, और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा, और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
0: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
1: जी।
0: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार है किसानों को लेकर, एक पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है?
1: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है ये हमारा मुख्य भोजन का में हम लोग खाते हैं, और इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो 106% का, जैसा अभी आपने बताया,

0: पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
1: जी,
0: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन था, जो कि अब तक हाईएस्ट है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे जो एमएसपी अनाउंस हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे हमारी एमएसपी से किसान भाई उसमें अधिक से अधिक किस फसल को ग्रो कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी गेहूं की बड़ी मात्रा है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो हमारी मिलेट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें जौ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जौ की अगर हम बात करें तो 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
0: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया तो इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं, 2024-25 में जो चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन की जो हमारी स्कीम्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर पल्सिस मिशन है, इससे दलहन की प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इंपैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में उतना उत्पादन नहीं होता है
1: जी।
0: हमारी इंपोर्ट पे निर्भरता है और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपये बढ़ाया गया है जो 58% मार्जिन के साथ फिक्स किया गया है।
1: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है जब सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
0: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए। तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है और जो एमएसपी का पैसा किसान के खाते में जाता है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
1: बिल्कुल। और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब रबी फसलों को लेकर ये जो पूरा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि किन फसलों पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से कि अब रबी फसलों की बुआई से पहले वो अपनी योजना बना सकें?
0: भारत सरकार हर साल 4 बार एमएसपी

0: अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी, खरीफ सीजन से पहले। रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को अपने डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है।
1: अब जैसे हम एमएसपी की ही बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की। जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
0: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य भी इनको मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोगों ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है जो एमएसपी अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
1: अब सरकार का जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर एमएसपी पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है। तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है या हिंदी में कहें फसल चक्र है या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनका उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन?
0: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, तो उसका असर उसकी जमीन की उर्वरता पर भी पड़ता है, वहां पर फर्टिलिटी भी काफी उसकी डिस्टर्ब होती है। तो एक उसमें चक्र बना रहना चाहिए जैसे कि आपने जिक्र किया, और ये चक्र हमारे देश में नेचुरली बन रहा है। आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो एमएसपी बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इम्पोर्ट पर निर्भरता भी है। इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बैलेंस बना रहेगा। तो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए, तो जब ये चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी भी उसकी बैलेंस रहेगी।
1: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हमारे पास बड़ी बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी खरीद को हम देखें तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
0: देखिए अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में गेहूं की खरीदारी 22 करोड़ 54 लाख मैट्रिक टन हुई थी, जो 2014 से 26 के बीच में बढ़कर के 37 करोड़ 15 लाख मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6 लाख 29 हजार मैट्रिक टन था, जो बढ़कर

0: के 2,20,00,000 मैट्रिक टन हो गया है, 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ दे सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है।
1: बिल्कुल।
0: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47,75,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी और 14 से 26 के बीच में 1,58,00,000 मैट्रिक टन की हुई है, 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है। तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी एमएसपी के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
1: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो वो कितना बढ़ा है इससे, क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े भी शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका सीधा लाभ भी उनकी आर्थिक मोर्चे पर भी होता ही है। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
0: देखिए, इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं, और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी एमएसपी के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सकें। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो एमएसपी पर है और प्रिक्वायरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
1: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों, गेहूं किसानों की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है। तो आंकड़ा ये है कि 256,00,000 करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
0: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफैक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 14 के बीच का था और दूसरा आंकड़ा 2014 से 26 के बीच का था, इसमें जो वृद्धि हुई है जो मैं देख पा रहा हूँ वो 3 गुने की वृद्धि हुई है। तो 3 गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में और दलहन खरीदारी में 1,900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था, और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है, और क्योंकि एमएसपी लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं,
1: बिल्कुल,
0: तो 2004 से 14 के बीच में 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
1: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर गेहूं चावल, ये गेहूं के अलावा जो 6 बड़ी रबी फसलें हैं इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265,00,000 से बढ़कर 831,00,000 का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं और कैसे जो एक पूरा तंत्र है, कृषि तंत्र, उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये लगातार प्रक्रिया जारी है?
0: जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो बिंदु हैं जिसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि एमएसपी कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है कि एमएसपी कभी भी 50% कब तो फिक्स हुई नहीं है। इससे क्या होता है, एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की, 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की एमएसपी जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं भी मिलता था। एमएसपी में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है पहले, अब आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: अभी जो एमएसपी का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
0: हाँ, डीबीटी के थ्रू जा रहा है, तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी

0: सुधार हुआ है।
1: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय होता है एमएसपी?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये अभी हम लोगों ने काफी जिक्र किया कि एमएसपी लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ फिक्स की जाती है। तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि किसान ने अपना वो लेबर अपने घर से यूज किया और घर के लोगों ने श्रम दिया हुआ है उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
1: जी जी,
0: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
1: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान है, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनको अगर एमएसपी मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?
0: मैं थोड़ी प्रक्रिया और आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है, इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो एमएसपी है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
1: बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सके, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सके, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो एमएसपी के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान ली कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से।
1: बिल्कुल।
0: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान ली आपके खुद का मशीनरी है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
1: तो अब कार्यक्रम में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के एमएसपी को लेकर फैसले भी आते रहते हैं, कैसे हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
0: देखिए, इसमें जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है, इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से।
0: और जिसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है, और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हमारे किसान भाई इन सारी फसलों को प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक से अधिक इसका उत्पादन करेंगे और बढ़ी हुई एमएसपी का उनका

0: मिलेगा, जिससे उनका इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पे आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े। और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है, और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के माध्यम से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

जी दोस्तों, साढ़े को बहुत सारे मैसेज आ चुके ने ते सानू मैसेज आया जी, जिला रोपड़ पिंड पक्कू माजरा ननुआ फार्म तो मैसेज करन वाले ने जी सुरिंदर सिंह, कुलवंत सिंह, सुखजोत सिंह, भूपिंदर कौर, मनजोत कौर। अगला सानू मैसेज आया जी, पिंड जखोद राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा। जिला मुरादाबाद पिंड दुलापुर उत्तर प्रदेश तो ने मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। अगला सानू आया जी, अस्तुपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सदीक। अगले मैसेज करने वाले ने जिला मुरादाबाद तो, माफ करना, सानू अगला मैसेज आया है,

जी सानू अगला मैसेज आया जी, पद्मा टकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, ते इन्हां ने सानू फरमाइश की है चाइना टाउन फिल्म चो गीत दे बोल ने बार बार देखो जरूर सुनावांगे जी। अगला सानू मैसेज आया जी उत्तर प्रदेश तो, दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय अनिल दिव्यांशु ते दर्शन भाई। अगे सानू मैसेज करने वाले ने जिला मुरादापुर तो मुकेश शीतल सोनू, सेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका तो सानू मैसेज आया जी शेख जिया उर्फ हरमान रहमान तो, कहते हैं कि कोई भी सानू गीत सुना दिता जाए। अगे सानू मैसेज करने वाले ने ननियोला अंबाला तो महिंदर, रंजीत, मनी, रूबी, हैप्पी, किरण सीमू, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक गुराया तो सानू मैसेज आया इन्हों का। फरमाइश है जी अगली मोहम्मद सईद अबासी, निगहत परवीन शाहनावाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, इन्हां सारयां दी फरमाइश ते आओ असी गीत सुनदे हां। लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच मेरे दिल ने जो मांगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव

0: और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defense manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala

सौगात प्रोग्राम सुन रहे सारे श्रोत्यानु गौरव दी प्यार परी नमस्कार। तुहाडा रेडियो बेली गौरव एक बारी फिर हाजिर है लैके प्रोग्राम सौगात। यो प्रोग्राम है जिहदे विच तुहाडे मन पसंदीदा जिहड़े गीत ने ना वो चलाए जांदे ने, और तुहाडी पसंद साडे कोल किद्दां पहुँचदी है 0181 2342 171 इस नंबर ते कॉल मिलाओ और जुड़ जाओ साडे नाल। और जे कॉल नहीं मिला सकते सारे जने नाल सुते पए ने खड़का नहीं करना, 94-655-36-077 इस नंबर ते वट्सएप कर दिओ। और जिहड़ा वट्सएप करना है वो तुसी करना है अपने नाँ दे नाल, अपने शहर का नाँ दस दिओ और किहड़े सिंगर का किहड़ा गीत सुनना वो दस दिओ। बस फिर वेखो तुहाडे पसंदीदा गीत नूं असीं किवें चलावांगे। तो फिलहाल जदों तक साढ़े नाल साढ़े कॉलर दोस्त जुड़ते हैं मैसेज आते हैं प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं इस प्यारे जे गीत दे नाल। और इस गीत नूं गाया सरदूल सिकंदर होरां ने।

0: बोल रहे ने?
1: सत श्री अकाल जी। हेलो
0: हेलो जी,
1: सर जी, मैं राजू बोलता जी, चंडीगढ़ तो।
0: राजू जी थोड़ा उच्ची बोलो की हाल चाल
1: बहुत
0: है?
1: वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: देखो जी, ऐसे तरह वधिया रहने चाहिए ने, क्योंकि तोड़े हाल चाल वधिया होंगे तो साढ़े तो अपने आप वधिया हो जाएंगे।
1: हाँ जी।
0: तो फिर अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो? की दिल करता पे?
1: लौंग दा लिशकारा फिल्म है सर जी, जगजीत सिंह जी दा। सारे पिंड च पुआड़े पाए, बिलोनी तेरे गोरे रंग ने।
0: ओ हो, गोरे रंग ने पुआड़े पाते जे। लिशकारा भी तुसी लौंग दा खलार ही दिता है। ते आओ फिर तुहाड़ी पसंद दा गीत सुनने आ। तुसी साढ़े नाल जुड़े हो, इहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

प्रोग्राम शुरू हो गया है जी। स्वागत और साढ़े नाल साढ़े पहले कॉलर दोस्त जड़े ने वह जुड़ गए ने, आओ उन्होंने नाल राबता कायम करिए। आ जाओ फिर। नमस्कार जी, कौन?

0: तो फिर अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो, की दिल करदा पिया?
1: लौं दा लिशकारा फिल्म है सर जी, जगजीत सिंह जी दा, सारे पिंड च पुआड़े पाए बिलोनी तेरे गोरे रंग ने।
0: ओहो हो हो, गोरे रंग ने पुआड़े पाते जे, लिशकारा भी तुसी लौंग दा खलार ही दिता। ते आओ फिर तुहाड़ी पसंद दा गीत सुनने आ, तुसी साडे नाल जुड़े हो, इहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कर लिए। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? हेलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: मैं जलराज जी गुरदासपुर तो गौरव जी, नमस्कार जी।
0: ओ नमस्कार जलराज जी गुरदासपुर, की हाल चाल ने तुहाडे?
1: बस कृपा जी आप जी दी।
0: और मौसम कैसा चल रहा है?
1: बहुत बढ़िया जी, बस तो चल रहा
0: जी। देखो जी, वधिया रहना चाहिए था, वैसे ठंड शुरू हो गई जे थोड़ी थोड़ी। खान पीन का ख्याल रखते हो? तो अज फिर केड़े सिंगर दा गीत सुनना जी? गुरदास मान जी का सुनना। लो जी, गुरदास मान जी का गीत हाजिर है। तुसी साडे नाल जुड़े हो, सानू कॉल कीती है, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू। लो जी, इन्होंने फरमाइश की है गुरदास मान जी के गीत की। गुरदास मान जी के बहुत सारे गीत साढ़े को पे ने, और एक गीत जड़ा मैनू बहुत पसंद है और तुहानू सारिआं नू ही बहुत पसंद होना। केड़ा गीत है आ देख लो, गल ठंड की हुई, हवा की हुई, और पिंड की हवा तो वधिया तो हवा कोई हो ही नहीं सकती।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात और सौगात कॉलर दे विच लिसनर बहुत सारे जुड़े हुए ने, मैसेज बहुत सारे आए हुए ने और मैसेज पढ़ दिए फटाफट। असी जरूर पढ़ना बंदा है वड़िंग खेड़ा तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा नमस्कार कहिंदे ने और कहिंदे ने गीत कोई भी सुना दिओ बस मैसेज जरूर शामिल करना। सरहिंद बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योति, सजदी तो उन्होंने बहुत सारे साथी जी आया नू तुहानू सारयां नू कहिंदा आकाशवाणी जलंधर। और मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा, लाले शर्मा, इंदराज शर्मा, सुरेश और उन्होंने बहुत सारे साथी जुड़े ने जी आया नू, इन्हां सारयां दा स्वागत। पिंड साबुआना फाजिलगा तो करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश, मानव, अनुरीत ते परीश ये भी जुड़ गए ने जी, इन्हां नू भी बहुत बहुत बधाइया कि इन्हों का मैसेज आ गया और असी पढ़ भी लिया शामिल भी कर लिया। बस इस तरह मैसेज करते रहो सानू ते इन्हां सारयां दी हुण मिली जुली फरमाइश जिहड़ी है वह मेरे को पहुँच गई है और जदों फरमाइश मिली जुली हुंदी है गई तुहानू दस्सिया सी कि गीत बहुत वधिया चलदा है, हुण चलान जा रहा प्रभ गिल दा गाया है गीत।

0: और जेड़ा सानू कॉल करेगा असी उहदा गीत भी चलावांगे। जी हाँ, एक कॉल आ गई साढ़े कोल। अगली जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड़ तो बोल रहे हैं सर।
0: महेश जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: धन्यवाद जी।
0: तो महेश जी आज गीत केड़ा सुनना चाहोगे?
1: नरेंद्र बीबा का सुना दो जी, रेशमी रुमाल।
0: लो जी, ये तुहाडी फरमाइश पे ही है। और थोड़ी देर पहला जड़ी कॉल लगी सी ना, वो धर्मा सागर जी की लगी सी, वो कॉल कट्टी गई है। गीत उन्होंने भी यही सुनना सी, उन्होंने कॉल दोबारा लगती है तो उन्होंने कहोंगे गीत कोई होर फरमाइश का सुना दो। गीत हुण ये चलान जा रहे हैं तुहाडी फरमाइश का, तुसी साडे नाल जुड़े हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी। तो फिर सुनिए जी, रेशमी रुमाल जिहड़ी फरमाइश आई है सानू दो जणिआं दी, हरजी राम मतलब तो ही है और नाल साढ़े धर्मा सागर जी।

जकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखो जदों ईश्वर का नाँ आ जाता खासकर माता का नाँ आ जाता ना तो दिल अपने आप ही भक्तिमय हो जाता। तो आज फिर एक बार दोबारा देखते हैं सुनते हैं कौन आया जी साढ़े वेड़े। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? हेलो जी, एक बार दोबारा अपना तारफ करवा दो। श्याम लाल जी बहुत बहुत स्वागत है। और फिर आज की मूड बनाया, गीत केड़ा सुनना जे? लो जी बिल्कुल, धुप ना छां रहनी है, बस ना ईश्वर दे ही रहना। तो फिर ये गीत सुनते हैं, तुसी साडे नाल जुड़े हो, इहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बिल्कुल, रहना तो कुछ नहीं, बस प्यार दे जड़े दो मिठे बोल ने, चंद जड़े पल ने, इस ईश्वर दे नाल कुदरत दे नाल ओही रह जाने ने। और प्रोग्राम दे विच भी बस हुण आखरी कॉलर दोस्त रह गए ने, उहनां दे नाल राबता कायम करदे आ। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात दे विच। और अज जांदे जांदे तुसीं गड्डी फड़ लई है।
1: हां जी,
0: आखरी कॉलर हो, फिर आज गीत केड़ा सुना दिए तुहानू?
1: हैप्पी राय कोटी जी।
0: केड़े वाला गीत सुनना जे हैप्पी राय कोटी दा?
1: कुड़ी मरदी तेरे ते जी।
0: लो जी, लो फिर प्रोग्राम दी आखरी पेशकश हैप्पी राय कोटी दा गाया ये गीत, फरमाइश तुहाडी है। और बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे नाल जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ते आओ जी प्रोग्राम दी आखरी पेशकश सुनदे हैं हैप्पी राय कोटी जी दा गाया ये गीत।

जैसे ही गीत दिनाल आज दा ये प्रोग्राम स्वागत होना इत्थे ही खत्म होंदा है। अपने रेडियो बेली गौरव नू इस प्रोग्राम नू खत्म करन दी इजाजत दिओ, पर तुहानू ये इजाजत बिल्कुल नहीं है जी कि तुसी रेडियो नू छड़ के किते जाओ, क्योंकि साडा अगला सैगमेंट हुण शुरू होण जा रहा है जिहदा नाम है पंजाबी मेलोडियस गीत। चुनवे पंजाबी गीत जिहड़े तुहाडे लई लैके आए हां असीं। एक घंटे का प्रोग्राम होएगा और 2 बजे तुम सुनोगे पंजाबी डुएट म्यूजिक, यानी कि पंजाबी दो गाने जिदे विच दो सिंगर मिल के तुहाडे लई गीत गाणगे। तुहाडी फरमाइशां तां मैं पूरियां करती हां और गीतां दे नाल प्यार जिहड़ी सांझ है वह पवाणगे, ते उस तो बाद फिर गुरबाणी विचार होएगा और फिर ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਗੀਤ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤਿਕਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

वड्डे किया वड्याइया किच कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे। साई कार कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए, नानक एकी बाहरी होर दूजी नाहीं जाए, सो करे जे तिसे रजाए। ए फरमान उस अकाल पुरख दी महिमा नू बयान करता है। उस दी वड्याई वड्डी है, उसका कितना वड्डा विस्तार है इस बारे कोई अंदाजा भी नहीं ला सकिया। जिन्हां ने उसका अंत पाउण दी कोशिश कीती, ओ ते अंत पछता ही गए। अकाल पुरख वड्डा है, उसकी वड्याई वड्डी है, वह किन्ना वड्डा है उसका अंदाजा उसके दर्शन कीत्या ही हो सकता है। पर जिन्होंने उसके दर्शन किते उसके विच ही समा गया, उसकी महिमा बयान नहीं कर सके। ऐसा साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा कीता केवट चीरा। इस शब्द का गायन किया है भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

वडे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा कीता केवट जीरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अवतार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस प्रभु दी शोभा बेअंत है, कथी नहीं जा सकती।

नित नवी शोभा है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। ओस प्रभु दी शोभा करके ही जीव रूपी स्त्रियां माण महसूस कर दिया हन। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। इस बात दी पुष्टि कल्याण राग विच साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी करते हैं। मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा। इस शब्द का गायन किया है भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: मेरे लालन की शोभा, सद नवतन मन रंगी शोभा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बलबीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। आओ सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी मनमोहन सिंह।
1: ये पावन शब्द पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज श्री गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 1322 उत्ते कल्याण महला पंजवां सिरलेख हेठ दर्ज है। रागी सिंघां नूं इस शब्द नूं कल्याण राग विच गाउण दी हिदायत है। शब्द की पहली पंक्ति विच गुरु साहब जी बचन कर रहे हन, मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। इस पहली पंक्ति तो ही इस गल का अंदाजा लग जाता है कि गुरु साहब जी उस प्रभु परमेशर उस निरंकार वाहिगुरू जी की महिमा उसकी वड्याई वर्णन करन लगे हैं। जदों असी इस पूरे शब्द वल झात मारते हाँ, जदों किसी गुरमुख जन जां किसी भगत जन नूं सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तो उसनूं इन्नी बेअंत खुशी इन्ना बेअंत आनंद मिल जाता है जो कि बयान नहीं किया जा सकता। उन्हां कोलों वह खुशी सांभी नहीं जाती। जिवें बरसात के मौसम विच जदों बदल पानी नाल भर जाता है फिर वह मीह के रूप में धरती उत्ते बरसन लग पैंदा है। सारी धरती उत्ते बनस्पति हरी भरी हो जाती है। इस तरह वह संत पुरश गुरु साहिबान वह खुशी दुनिया विच वंडनी चाहते हैं। सो विचार अधीन शब्द की पहली पंक्ति विच गुरु साहब जी बचन कर रहे हैं, मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। भाव मेरे लाल प्रभु परमेश्वर की शोभा उसकी वड्याई सदा ही नवी रहिंदी है, क्योंकि वह परमेश्वर कदी जमदा नहीं मरदा नहीं, ना वह बुढ़ा हुंदा है अते ना ही पुराना हुंदा है। सो जो परम पिता आप मौत तो रहित है, अमर है, अनादि है, उसकी महिमा उसकी वड्याई किवें खत्म हो सकती है। उसकी वड्याई मेरे मन नूं सदा आनंद बख्शती रहिंदी है। रहाओ भाव ठहराओ। शब्द की अगली पंक्ति विच हजूर बचन कर रहे हैं, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी। योग ज्ञान

संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया है,

क्या सच्चाई है क्या वास्तविकता है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया, कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तू

थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो मैं चला, कल से काम

सच ता परजानिया जा सच तरे प्यार नाउ सुनमन रहसिया ता पाए मुख द्वार। सच ता परजानिया जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता पियो। सच ता परजानिया जा

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जती तुपीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरु मत सतकर संगत उद्रिया सोई नाम अचल पगते पवतारण अमरदास गुरु को फुरिया नाम कित संसार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म त ऐसक अथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो

किन्नर सहस समप ते नर दुली चैब है ते नर उथप विथप सुख लहे ते नर संसार मह अप पट रिप मद ते सकियत ते नर जालप पण गुर अमरदास सो

0: सुपन इक प्रताख इक इक समय लीनो तीस इक अर पांच सिद्ध पैतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है इक इक कर वरनेओ गुरु अमरदास जाल पने तू इक लोड़ है इक मनेओ
1: गुरु अमरदास परसिए बो हम पाठक में नासे गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधे का सासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौ मुके गुरु अमरदास परसिए अपाओ लबे गौ चुके एक बिन दुगन जो तौर है जास मंत्र मान वेल है जाल पाप दार थे तड़े गुरु अमरदास डिठे मिले
2: सच नाम करतार सोदड़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिव रहो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखानो जो गुण लख अगम तिन्हे गुण अंत ना जानो बोथो बिधाते निर्मय हो सब संगत कुल उदाहरण गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण गुरु

तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो दुविधा छुटकै नाहीं मन कामना तीर्थ जाय बसियो सिर करवत तराए